印度德里广播电台，现在我们播送古拉玛丽和阿沙波斯里唱的歌曲，请收听。

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी।
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए।

0: तुम नहीं समझे कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: Heat of West Bengal from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of...
1: Rajapal Sri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, Kendra mein mere sahyogi Pratap Rao Jadav ji, anya sabhi mahanubhav, yahan Kolkata mein jute sabhi pratibhagi, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग-अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा।

ये अद्भुत पहल है। स्वच्छता से स्वागत, स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to life.

lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein Bhagwan Krishna ne yoga ke vishay mein kaha hai, yukta ahar viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapna avabodhasya yogo bhavati dukhaha. Arthat, santulit ahar vihar se, santulit kriyao aur karmo se, santulit nind aur jagne se, yog दुखों का नाश करने वाला हो जाता है. ये संतुलन ही योग का आधार है. यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है. लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं. बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको. योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है. योग हमें डूज और डोंट सिखाता है. और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है. साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध. ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है. इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है. इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है. योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है. साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं. लेकिन

आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के

0: और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
1: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे, हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखिए कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
0: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
1: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलिए हम आयुष मंत्रालय भी हमको हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
0: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
1: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है, जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा

0: करा हुआ है। योग तो ऋषि मुनियों की देन है। हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया। लेकिन इस साल वहां की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहां पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार बीजेपी सरकार वहां पर चुन के दिए और वो वहां के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहां पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहां के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था जहां पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया। हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था लेकिन अभी ये बारिश के दिन है कभी भी बारिश आ सकती है तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके और रेड रोड की अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से 1 हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगेगी कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देखे ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि

0: आज YouTube पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,46,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था। ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है। नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग पैकेज। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर ईयर ट्रैवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंटरव्यूअर वॉज दीक्षा सक्सेना, आकाश।
3: Para pemirsa yang terhormat, setelah acara spotlight tadi kami menghibur Anda dengan beberapa lagu non film, hari ini kami memutarkan lagu film songs. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.

0: नीट यूजी पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है।

0: है एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

0: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए

देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सहपहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार तीन ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में तीन मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की कयादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की कयादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर अहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश और खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मुकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, نالندہ، احمدآباد، سارناتھ، لے، حیدرآباد اور سلچر سمیت 12 اہم مقامات پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ آیوش کی وزارت نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ تنظیموں نے یوگ سنگم پورٹل پر اندراج کرایا ہے، جس سے اس سال کی تقریبات میں عوام کی بے مثال شرکت کی

0: याद किया था। एनटीए ने कहा है कि वो साफ शफाफ और खुश उसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ व शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2 लाख से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें सीसीटीवी, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकामात पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क्यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 10 आवेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिफ के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम दी पायनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के जुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जायेंगे। मुंबई से अंकित आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम, मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बोला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की सुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तिहान आज शफाफ और नकल से पाक, इम्तिहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने उड़ीसा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS जूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य की दुनिया उस अंतहीन आकाश की तरह है जहाँ शब्दों के सितारे अपनी चमक से समाज को दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही शब्दों के धनी जाने माने कवि और संवेदनशील साहित्यकार हैं श्री मनोज अबोध। प्रस्तुत है कवि सम्मेलनों के संस्मरण क्रम में श्री मनोज अबोध से श्री ऋषि कुमार शर्मा की भेंट वार्ता।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता दें हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध गजलकार, कवि और लेखक श्री मनोज अबोध जी। मनोज अबोध जी, हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि जी।
4: श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं, उनकी रचनाएं होती हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, परंतु कुछ कवि, कुछ रचनाकार इतने गंभीर और इतने अच्छी रचनाओं का पाठ करते हैं, इतनी अच्छी रचनाओं को लिखते हैं, उनमें मनोज अबोध जी का नाम शीर्ष पर आता है। आपने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया है, अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आपको पुरस्कार मिले हैं। वर्ष 1987 से दीर्घ काल तक आप फीचर लेखन का काम कर रहे हैं, आपने संपादन का काम किया है, आपने गीत लिखा है, छंद लिखा है, दोहा लिखा है, गीत के साथ साथ आपने लघु कथाएं लिखी हैं और सबसे ज्यादा जो आपने लिखी हैं वो गजलें लिखी हैं।
5: हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे
4: तो आप जब कविताओं को लिख रहे थे, गजल को लिख रहे थे या अपनी रचनाओं को लिख रहे थे, उस समय क्या आपने सोचा था कि आप इतने बड़े कवि या इतने बड़े लेखक बन जाएंगे?
5: ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि कोई सोच के तो कभी नहीं बनता। मेरा अपना मानना यह है, ये स्वतः स्फूर्त होती है, आपका जो वातावरण आपको बचपन से जैसा मिलता है वैसा ही है। मेरे पिता चूंकि अंग्रेजी के अध्यापक थे और उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उस सिलसिले की वजह से घर में किताबें बहुत होती थी, पत्रिकाएं उस समय बहुत आती थी, और कोई साधन तो उस समय था नहीं। अब से अगर 50 साल पहले की बात करें, 1975 के आसपास की, तो उस समय यही पत्रिकाएं होती थी। बाल भारती है प्रकाशन विभाग से, जो अभी भी आती है, वो मेरी बड़ी प्रिय पत्रिका रही। अभी भी मेरे पास 1967 का एक अंक उसका सहेज कर रखा हुआ है, जब सावित्री देवी परमार उसकी जो है संपादक होती थी।
4: ये बड़ी बात है।
5: हाँ, तो उस समय क्या था कि प्रकाशन विभाग चूंकि सरकारी प्रकाशन था, तो बाल भारती बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालयों में विभाग द्वारा भेजी जाती थी, तो वो सुलभ थी। फिर उसके बाद चूंकि पिताजी बाहर रहते थे, तो हम लोग ट्रेन से जाते थे, रेलवे स्टेशन पे एच व्हीलर एक बुक स्टॉल होती थी, वो मेरा एक क्रेज होता था। बस आप सोचिए कि उस पर वहां से पराग लेना या चंपक लेना, नंदन लेना, ये जो है। और अगले अंक की किसी बार ऐसा होता कि अंक आया नहीं है, तो आप सोचिए कि ऐसी मायूसी हो जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया है।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। मैं ये जानना चाहता था, आपने सबसे पहली कविता या गजल या दोहा कब लिखा और उसको मंच पर कब पढ़ा?
5: मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: कि मैं उस समय करीब कक्षा 7 में पढ़ता था, और वो गांव का विद्यालय था, मैं पिताजी के साथ ही अपने, तो वहां कुछ नहीं था, गांव था बिल्कुल हाईवे के किनारे, लेकिन हफ्ते में एक बार वहां पेंट लगती थी जो साप्ताहिक बाजार होता है, और उसमें घूमना, वो सोचिए कि ऐसा आजकल जैसे मॉल में घूमते हैं ना लोग, तो हमारा उस बाजार में
4: बिल्कुल
5: मिट्टी के बीच में घूमना, पूरे हफ्ते इंतजार करते थे वहां पर, जमीन में भट्टी बना के वो लोग पकौड़ी बनाते थे, और मुश्किल से 10 पैसे या 25 पैसे की पकौड़ी बहुत सारी आती थी, तो वही समझिए कि आप ऐसी ट्रीट होती थी, 5-स्टार ट्रीट उस समय की, वो मेरे लिए निर्धारित थी। शनिवार को लगता था, शनिवार को मैं बाजार में जाना और वहां से पकौड़ी लेना, तो उसी तरह मैंने स्वाभाविक तौर से वो पकौड़ी ली और खाई। उसके बाद देखा वो तेल सना, एक कुछ डायरी का पेपर था।
4: अच्छा।
5: किसी की, क्योंकि वो रद्दी में बेच दिया होगा, और उस पर 2 पंक्तियां लिखी हुई थी, तो स्वाभाविक तौर से एक उत्सुकता हुई और मैंने वो पढ़ी। उस पर एक शेर लिखा हुआ था, मैं जानता अच्छा। नहीं था कि वो शेर है।
4: हाँ।
5: लेकिन वो 2 पंक्तियां थी, ये तो बाद में पता चला कि ये शेर उसे कहते हैं। उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम तैश में आकर मेरा खत फाड़ भी डालो, तुम्हारे पांव चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े।
4: वाह वाह।
5: तो आप सोचिए कि ये जो 2 पंक्तियां थी, जो बाद में मैं समझा कि वो एक खूबसूरत शेर था, वो मेरे जीवन का मतलब पहली कविताएं थी जो मैंने पढ़ी और मुझे अच्छी लगी। और फिर उसके बाद के जितनी चिट्ठियां मैं लिखता था, भले वो माँ को भी लिखता हूँ, बहन को लिखता, किसी को भी लिखता था, तो ये शेर जरूर उसमें नीचे लिख देता था।
4: अच्छा।
5: मुझे मालूम नहीं किसका था।
4: हाँ।
5: उसके बाद से मेरी स्वाभाविक तौर से थोड़ी कि मैं भी लिख सकता हूँ, कुछ कुछ मुझे लिखना चाहिए, तो मैं तब लिखता था कुछ बीच में। और ये करीब उसके 4-5 साल बाद, आप मानिए कि

0: ये उस समय हो गया था, 78 का समय आ गया था, 77-78 तब मैंने एक कविता लिखी थी और वो सबसे पहले छपी थी।
1: अच्छा।
0: बधाइयों का एक पाक्षिक पत्र होता था, तो वो चार पंक्तियां लिखी थी मैंने उस समय, तो वो उसमें छपी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि पांचजन्य मैंने देखा, तो पांचजन्य में एक परिचर्चा जो है प्रेम विवाह पर कुछ चर्चा थी, तो उसमें देखा कि आप भेजिए विचार अपने इतने शब्दों में भेजिए, तो वो मैंने भेजा, तो तब से ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ।
1: पहली बार आपने मंच से कविता कब पढ़ी?
0: मंच से कविता मैंने पढ़ी है 1984 में।
1: अच्छा।
0: वो बिजनौर में आके पढ़ी मैंने, क्योंकि जो भी लिखा था वहाँ एक कवि सम्मेलन था, हालांकि उससे पहले एक साहित्यिक संस्था वहाँ पर थी, साहित्य संघ, हम उससे जुड़ चुके थे, तो उसी के मार्फत वहाँ जाने का मौका मिला। बड़े बड़े कवि थे, तो वो जैसे हो ना कि भाई एक बच्चा हमारा भी है ये जो है ये कविता पढ़ेगा पहली बार, तो तब मैंने वहाँ पढ़ी थी।
1: वैसे तो आप दुष्यंत कुमार की धरती से आते हैं और से, है ना, ऐसा तो नहीं है कि वही प्रभाव आपके ऊपर है?
0: देखिए, धरती का वातावरण का प्रभाव तो रहता ही है। दुष्यंत जी से तो मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन उनके बेटे से और उनके परिवार से मिलने का बड़ा
1: अवसर
0: अवसर रहा है। कमलेश्वर जी से भी, उनकी बिटिया से, फिर बाद में पता चला कि वो एक बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं। वहां मैं 1980 में जो बिजनौर का एक अखबार था उसमें संपादकीय विभाग में मैंने काम करना शुरू किया था, उत्तर भारत टाइम्स नाम था उसका, तो वहां पर कुछ एक विवाद था कुछ प्रॉपर्टी का दुष्यंत जी की, तो उस सिलसिले में आलोक भी आए थे और तब कमलेश्वर जी से मुलाकात भी हुई थी।
1: तो वो
0: और
1: पहला कवि सम्मेलन था
0: जी,
1: उसकी कुछ स्मृतियां हैं आपके पास?
0: नहीं, उसकी बहुत ज्यादा स्मृतियां नहीं है।
1: हाँ।
0: क्योंकि उस समय जैसे आप देखते हैं ना किसी कोई फंक्शन है उसमें किसी घर के बच्चे को कर दिया कि ये भी कविता पढ़ेगा,
1: ये याद है कि कौन सी कविता थी?
0: ना, ये भी याद नहीं है कि कौन सी कविता थी, क्योंकि वो उस समय क्या था, उस समय जो पंक्तियां आपने लिख दी ऐसा लगता था कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता।
1: हाँ।
0: यही सबसे अच्छी है। और फिर मैंने जो कविताएं लिखनी शुरू करी, आप सोचिए कि उनको बताया गया प्रकाशन के लिए भेजिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादंबनी, मतलब उससे नीचे ख्याल ही नहीं था
1: जी, जी।
0: वहाँ सारी का उसको भेजना, और जब वहां से वो संपादक के खेद सहित लौट के आती थी बाकायदा, तो वो जो पर्ची होती थी उसको भी संभाल के हम रखते थे।
1: आपकी रचनाएं जिन्होंने वापस भेजी है, अब आपकी रचनाएं छप रही है और साथ साथ में आप लोगों की रचनाएं छाप रहे हैं संपादन में, बताऊँ की आप बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं
0: जी।
1: एक मुक्तक आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए, तो हमें लगेगा कि मनोज अबोध जी कवि सम्मेलन पर जो जाते होंगे तब उस समय उनका कितना प्रभाव रहता होगा।
0: ऋषि जी, मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ, उसी समय का सुनाता
1: हूँ। हाँ, बिल्कुल,
0: जो अब से 40-42 साल पहले का मुक्तक मैं सुनाता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध भी रहा ये।

0: बहुत सुंदर
1: मिलने जैसे बहुत बार आकाशवाणी पर भी बजा है और जो आकाशवाणी के आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख कार्यक्रम हुए हैं कवि सम्मेलन उसमें ही मैंने पढ़ा है। तो ये बहुत पुराना है, अब तो नहीं जरूरत पड़ती पढ़ने की, लेकिन आपने कहा तो मुझे उस समय की याद आई, उस समय के कवि सम्मेलनों की।
0: जिस समय ये आप मुक्तक पढ़ते होंगे या इसके अलावा कोई और गीत या गजल पढ़ते होंगे तो दो तरह से वाह वाह मिलती है, एक तो जो आपके साथी कवि हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं और एक सामने जो दर्शक बैठे होते हैं जो सुन रहे होते हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं। तो कोई ऐसा संस्मरण आप मुझे बताएं कि जो आपके मन को छू गया हो आज तक भी वो आपसे नहीं निकल पा रहा हो ना।
1: ऋषि जी दरअसल ऐसे संस्मरण तो बहुत हैं, क्योंकि उस समय ना तो टेलीविजन था और फोन का तो किसी को विचार भी नहीं आया था कि कोई ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सुनते थे बस वो लैंडलाइन फोन कहीं कहीं कुछ खास जगहों पर होता था। कवि सम्मेलन ही ऐसी चीज थी मनोरंजन की या लोगों से जुड़ने की। और अमूमन जो कॉलेजों के कार्यक्रम होते हैं उसमें तो मुझे बुलाया ही जाता था क्योंकि युवा कवियों में नाम होता था। वहां मैंने देखा तो बहुत आनंद आता था कि जब वहां जो है बैठाते थे वो लड़कियां एक तरफ होती थी, लड़के एक तरफ होते थे।
0: बिल्कुल सही बात,
1: इस तरह से जो है बड़ी दूरियां होती थी उनके बीच में।
0: जैसा कि आंखियों के झरोखों फिल्म में दिखाया है कि वो जो ना दोहे इधर से लड़कियां पढ़ती हैं उधर से लड़की, और उधर लड़के वाह वाह करते हैं उधर से लड़कियां वाह वाह करती है ना, वैसा ही माहौल रहा होगा ना।
1: तो

0: और तब मैं आप सोचिए कि बड़ा प्राउड होता, बहुत अच्छा लगता था कि उस समय और कोई तरीका नहीं था। मैंने देखा कि लड़के भी और लड़कियां बहुत ज्यादा कॉपी और पेन लेकर बैठती थी और जब वो पढ़ते थे तो वो लगातार नोट करती रहती थी।
1: अच्छा,
0: हाँ नोट करती थी।
1: कितना अद्भुत रहा होगा,
0: हाँ,
1: है ना?
0: तो वो जो है बाबा के साथ जो है कि आपकी पंक्तियां कोई इस तरह से पसंद करके उनको कॉपी पे उतार रहा है और उतार रहा है तो बाद में पढ़ेगा, उनको दोहराएगा, ये मानते हुए वो बड़ा खूब लगता था। और उसके बाद अगर जब टी ब्रेक होता था तो वो कई लड़कियां आती थी कि सर ये जो है एक पंक्ति अधूरी रह गई थी उस समय लिखने से, इसमें क्या ये लिखना है। और ऑटोग्राफ भी लेते थे। आप सोचे तो उस समय बड़ा वीआईपी सा, बड़ा अपने को ऐसा लगता था कि बड़े सेलिब्रिटी से है। लेकिन ये है कि वो अब जो है आप सोचिए, आप माहौल एकदम से पलट गया है कि आप सोशल मीडिया और उसी पर सब रह गया है।
1: क्या कोई ऐसे श्रोता या ऐसे व्यक्ति या ऐसे कवि की कोई टिप्पणी आपको याद है जो आपकी कविताओं पर या आपके गीतों पर, आपके गजलों पर, आपके मुक्तकों पर मिली होगी?
0: नहीं, टिप्पणी की क्या बात है। हाँ। आप सोचिए कि मुझे तो मेरी गजलों ने, मेरी कविताओं ने इतना बड़ा पुरस्कार दिया कि जिसके सामने कोई पुरस्कार नहीं टिक सकता है। जो मेरी जीवन संगिनी है वो केवल मेरी कविताओं पर ही।
1: अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना।
0: वो केवल वो जो है हैदराबाद में रहती थी और
1: अच्छा,
0: जो स्वतंत्र वार्ता अखबार है निकलता है, हिंदी का बड़ा अखबार है, वार्ता तेलुगु का उसका निकलता है और हिंदी का उनका स्वतंत्र वार्ता है, उसमें वो उप संपादक थी रूबी मोहन थी। तो चूंकि मैं मंथन फीचर्स और वो निकालता था तो अखबार निकालता था, वो जाते थी कॉपी वहां और उस समय सब भेजते थे छपने के।
1: यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी प्रेम की कविताओं को सुनकर ही,
0: हाँ पढ़ के सुन के जो है ही वो मतलब इतनी जो है बन गई मेरे साथ कि वो हमेशा के लिए पूरी ताउम्र के लिए बन गए। अब इससे बड़ा पुरस्कार आपको ये क्या मिल सकता है?
1: सही बात कर रहे हैं आप, ये तो है ना।
0: ये लोग तो सोचते हैं कि साहब हमें ये सम्मान नहीं मिला, हमें अकादमी का नहीं मिला, उसका नहीं मिला, हमें तो पूरा जीवन ही बदल गया उससे जो है।
1: नहीं नहीं, फिर भी जो जीवन तो बदला उस पल
0: जी,
1: जिस पल वो आपके साथ जुड़ गई
0: जी,
1: लेकिन उसके बाद या उससे पहले ऐसी लोगों का कथन आपको ध्यान आ रहा हो कि भाई, या कोई घटना ध्यान आ रही हो कि श्रोताओं को या कवियों को देखकर आपको लगता हो कि यार वास्तव में एक अच्छा गीत है, अच्छा
0: ऋषि जी, मैं दरअसल मूल रूप से अपने को प्रेम का कवि मानता हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
0: अब तो चूंकि समय के साथ साथ हर चीज लिखनी होती है, लेकिन उस समय प्रेम हम लोग लिखते थे
1: जी,
0: उम्र भी थी और उसी तरह के भाव भी थे। तो मैं देखता था कि कविता का कितना बड़ा प्रभाव होता है, गीत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। मेरी कई जो है लड़कियां इतनी फैन थीं कि उनसे जो है आप सोचिए कि अब तो ये लगता है पीछा छुटाना ही बोलेंगे उसे, वो बड़ा मुश्किल हो गया था। और चिट्ठियां बेलोस होके वो लोग चिट्ठियां लिख देती थी, पत्र लिखती थी। मैंने अभी भी बहुत सारे पत्र ऐसे सहेज के लिखे हुए हैं।
1: किसी पत्र का जिक्र?
0: बहुत सारे पत्र हैं ऐसे और उनको पत्र को अगर आप अब बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो प्रेम पत्र ही है। हाँ, लेकिन वो चूंकि उस समय की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी मेरी कविताओं के ऊपर, गीतों के ऊपर, तो गजल तो उस समय कम लिखते थे, दोहे मैंने लिखने शुरू कर दिए थे, तो प्रेम के दोहे भी लिखते थे। एक मेरा मुक्तक जो है उसकी आलोचना जो साथ के बैठे वाले कवि हैं वो तो आलोचना करते थे उसकी, लेकिन ये है कि वो जो श्रोताओं में जो युवा श्रोता होते थे, लड़कियां होती थी, लड़के होते, उनको बहुत पसंद आता था तो मैं सुना देता था। लेकिन ये है कि वो जो मेरे पीछे जो मंच पर बैठे हुए लोग होते थे वो जरूर जो है आलोचना करते थे, यार कब तक पढ़ते रहोगे।
1: नहीं नहीं, श्रोताओं की फरमाइश पर तो कहना ही पड़ता है
0: तो
1: ना?
0: वो मैं सुना ही देता था उनको। कई बार फरमाइश भी होती थी, अगर वही श्रोता एक दो ऐसा भी होता था उस समय
1: जी,
0: क्योंकि पास पास के उसमें 20-30 किलोमीटर के कस्बा दूसरे वहाँ के कॉलेज में है, वहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम है, पता चल गया अखबारों में आती थी कि वहाँ एक कार्यक्रम होगा, तो यहाँ तक सोचिए कि बस से बैठ के, और कोई साधन नहीं था, बस ट्रेन का ही साधन था, श्रोता वहां तक पहुंच जाते थे। ऐसा जो उन लोगों को परिचित चेहरों को आपने देखा तो आपको ऐसा अपने को बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, आपको ऐसा लगता था कि भाई इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ी चीज नहीं, वही आपको बढ़ने की प्रेरणा देता था कि भाई ये लिखिए। ये मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं, आप उस समय के माहौल को, उस समय के वातावरण को ध्यान में रखें जब
1: जी जी।
0: एक कुछ बात नहीं होती दुनिया के झमेले में,
1: वाह,

0: मिलना तो कभी हमसे, चुपके से अकेले में मिलना। तो ये इन चार पंक्तियों से आप सोचिए कि बहुत सारे दोस्त भी बने और बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी रही
1: अच्छा, जो डॉक्टर कुमार बेचैन है उनका एक मुक्तक है कि जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे,
0: हाँ
1: और जिंदगी के बन गई है एक कुशन और चुभने के लिए हैं पिन
0: पिन
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे।
0: सारे,
1: उनकी मुझे लगता है संग्रह का नाम ही पिन बहुत सारे था,
0: हाँ पिन
1: है ना,
0: बहुत
1: इतनी
0: सारे नाम
1: अच्छी
0: से।
1: है। लेकिन
0: हाँ
1: आपकी एक रचना है कीलों के ऊपर, है
0: हाँ ये
1: ना,
0: गजल
1: एक
0: है।
1: रचना बड़ी अच्छी आपकी कीलों की है। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं से आप वो रचना को आप सुनाएं।
0: मैं चार पांच शेर उसको सुना देता
1: जी
0: हूँ।
1: जी जी
0: चुभ गई पाव में कई कीले,
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: चुभ गई

दई, और एक शेर आपके और श्रोताओं के लिए खास, कि जब चढ़े जिंदगी की सूली पर,

0: ले
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर
0: जंग खाई वे कथई की एक शेर इस पे गजल का हुआ वो भी आपको समर्पित कर रहा हूँ।

0: बहुत सुंदर आपने ये गजल पढ़ी है और जीवन के यथार्थ को ये व्यक्त कर रही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी।
0: और अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप कवि सम्मेलन दिल्ली में पढ़ते हैं, आपने बिजनौर में भी पढ़े हैं, आपने और राज्यों में भी पढ़े हैं, अभी आप भोपाल भी गए थे, वहां भी आपने रचनाएं पढ़ी, तो आपका क्या अनुभव है श्रोताओं को लेकर या अपने संस्मरण को लेकर, कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें?
1: देखिए ऋषि जी, सच बात तो यह है कि जो कवि सम्मेलन है, जिनको कवि सम्मेलन के तौर पर जो प्रोफेशनल कवि सम्मेलन है, उनसे तो मैंने अपने को दूर कर लिया है, करीब पिछले 15 साल हो गए हैं। हाँ, जो छोटे जहाँ अपनी अपने लोगों की गैदरिंग होती है, जो छोटे कार्यक्रम होते हैं थोड़े से, जहाँ पर प्रोफेशन का या पैसे का धन का कोई,
0: यानी आप कहना चाहते हैं जहाँ व्यवसायिक कवि नहीं होते,
1: व्यवसायिक, हाँ, व्यवसायीकरण जो वो नहीं होता, उनमें मैं जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ।

0: और वहां सुनाता भी हूं। जहां तक कवि सम्मेलन के बारे में मेरी राय है कि पहले कवि सम्मेलन जो होते थे तो उनके प्रति जो श्रोताओं की भावना होती थी वो अब के कवि सम्मेलनों में नहीं है, और उसके पीछे व्यवसायीकरण ही एक कारण मेन मान सकते हैं, या फिर आप सोचिए कि मनोरंजन के बहुत सारे दूसरे साधन भी आजकल हो गए हैं, समय की बहुत कमी श्रोताओं के पास भी है। पहले आप देखिए कि मैंने वो कवि सम्मेलन जो है उनमें शिरकत की है कि जहां शाम से जगह घेरने के लिए कि हम आगे बैठे, उस हिसाब से पहले कुर्सियां वीआईपी कुर्सियां होती थी, उसके बाद जहां रस्सी बंदी होती थी,
1: आम आदमी के लिए,
0: आम आदमियों के लिए, उसमें पहले बैठने के लिए लोग शाम से बैठते थे। कवि सम्मेलन रात को 10 बजे शुरू होता था, शाम से 7 बजे से लोग आके बैठ
1: रुचि थी उनकी है ना,
0: तो रुचि होती थी और रात रात चलता था। आप सोचिए, और जो बड़े दिग्गज कवि थे एक दो तो उनको रोके रखते थे, नीरज जी हुए, किशन सरोज जी हुए, तो उनको रोके हुए रहते थे कि भाई लास्ट में, तो उनको सुनने के वजह से भी पूरी भीड़ जो है रात को जमी रहती थी। आप सोचिए 4-4 बजे भी सुबह के जो है कार्यक्रम खत्म हुए हैं, और तभी भी जो है जब ये कहते थे कि कार्यक्रम खत्म हो गया, अब जो है कवि सम्मेलन खत्म हो रहा है, तब लोग उठते थे, खुद उठ उठ के जाने नहीं। आजकल स्थिति ये हो गई है, आजकल तो थोड़ा बहुत सुना सुनाया और वो जो है लोग जाने लग जाते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है।
1: मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई शेर पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं मंच से, और सामने श्रोताओं से भरा हुआ पंडाल है या हॉल है, जब आपको कोई श्रोता ये कहता है कि इस शेर को दोबारा पढ़ें, तब कैसा लगता है?
0: तब बहुत अच्छा लगता है, तब ये लगता है कि वो लिखना जो है वो सार्थक हुआ, क्योंकि वो बात जो है आप कहना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है ऋषि जी कि कभी कोई भी हो, रचनाकार कोई भी, वो अपने विचार अपनी सोच के हिसाब से कोई चीज लिखता है, और वो कन्वे पूरी तरह कई बार श्रोताओं को पाठकों को नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप पाठक से या श्रोता से सीधा जुड़ रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो उसके मन तक उतरती चली जा रही है, कविता की, गीत की, गजल की, यही सार्थकता है, और ये जो है यही आपको सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है उस कार्यक्रम का। वो अलग बात है, प्रोफेशन के और उसके साथ कोई पारिश्रमिक आपको दिया जाता है नहीं दिया जाता, वो एक सब चीजें अलग है।
1: हम जब कविताएं पढ़ रहे होते हैं और स्टेज पे जाने से पहले आयोजक हमको एक जगह पे बैठाते हैं जहां हम सारे कवि बैठ के बातचीत करते हैं, वहां की कोई ऐसी रोचक घटना जो आपको लगे कि हमारे श्रोताओं को जाननी चाहिए, या कोई ऐसी घटना जो मंच पर आपने पढ़ते पढ़ते कुछ अजीब सी स्थितियां हो जाती हैं तो वो लगता है कि भाई ये जरूर बताना चाहिए हमको, श्रोताओं को, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कोई संस्मरण।
0: ऋषि जी, ये बात आपने सही कही कि वो समय होता था कि जब कवि बाहर से बुलाए जाते थे, तो अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम वहां पर है तो हम आयोजकों में या इंतजामिया कमेटी में उसमें होते थे, वो अलग बात है कि कविता भी पढ़ते थे, लेकिन जो वरिष्ठ कवि है हमारे, जो हमारे आदरणीय, उनकी देखभाल करना, लेकिन उस समय के कवियों की बहुत सीमित आवश्यकताएं होती थी।
1: हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल।
0: और यहाँ तक होता था, होटल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं होते थे, तो ये होता था जो कमेटी के लोग हैं कि वो दो कवि आपके घर में रुकेंगे, ये दो, एक दो ये आपके घर में रुकेंगे, तो हम लोगों के बीच में ये वो रहती थी, नीरज जी आ रहे हैं तो उनको भाई वो उनके इंतजाम हम देखेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, उर्मिलेश जी हैं तो वो हमारे साथ रहेंगे, और आप सोचिए कि उसके बाद फिर वो बहुत सादगी के साथ भोजन भी उन्होंने किया, बहुत थोड़ा सा अपना,
1: यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 4 या 5 दशक में कवि सम्मेलनों के आयोजन में बहुत बड़ा फर्क आया,
0: बहुत फर्क, मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया है
1: ना।
0: अब जो है उनको कन्वेंस भी उसी सुविधाजनक तरीके से, और आप सोचिए कि उनको रहने का व्यवस्था भी वैसी, तब ऐसा होता था हम लोग फिर उनको बैठा के, अगर स्कूटर है, बाइक तो बहुत मुश्किल से होती थी, स्कूटर है तो बहुत बड़ी बात है, वरना रिक्शा में बैठा के भी हम लोग लाते,
1: यानी आजकल दिखावा बढ़ गया है,
0: दिखावा बहुत बढ़ गया।
1: अच्छा मनोज जी, मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा कवि है जो आपको प्रभावित करता है? आप तो दुनिया को प्रभावित करते हैं।
0: नहीं, देखिये ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं कि जो प्रभावित करते हैं, जो कुंवर जी की बात आप कर रहे थे, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद थे, उनके साथ मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत मंच शेयर किए हैं कुंवर जी के साथ भी, उर्मिलेश जी आज नहीं है, राजगोपाल सिंह जी वो भी नहीं है, लेकिन ये सब मेरे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी बधाइयों के।
1: मनोज जी, आपने अपने बहुमूल्य संस्मरणों और अनुभव से न केवल कवि सम्मेलनों की जीवन तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है, बल्कि साहित्यिक मंचों की गरिमा, परंपरा, संवेदनशीलता को भी रेखांकित किया है। आपके अनुभव निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं, साहित्य प्रेमियों और युवा रचनाकारों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। आपकी उपस्थिति हमको बहुत प्रिय लगी है, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: कवि सम्मेलनों के संस्मरण क्रम में अभी आप श्री मनोज अबोध से श्री ऋषि कुमार शर्मा की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज। कहते हैं साहित्य वह योग है जिसे व्यक्ति संवेदनशील, गुणी, परोपकारी, प्रकर्मी और विकार रहित बन सकता है। 14 जून को साहित्यिक पत्रिका ट्रू मीडिया के तत्वावधान में वरिष्ठ

0: साहित्यकार एवं कवित्री डॉक्टर भूपेंद्र कौर सचदेवा के सम्मान में एक भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्य, संस्कृति और सम्मान की इस गरिमामयी संध्या में दिल्ली एनसीआर के अनेक प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार और समाज सेवी एक मंच पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुष्मिता महाजन ने की। विशेष अतिथि के रूप में पंकज सक्सेना जी एवं श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन लक्ष्मी अग्रवाल जी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित साहित्यकारों ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी है, जो समय समय पर समाज को नई दिशा प्रदान करती है। काव्य गोष्ठी में उपस्थित कवियों एवं कवित्रियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, प्राकृतिक, राष्ट्रीय भक्ति, सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन विषयों पर प्रभावशाली काव्य पाठ प्रस्तुत किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर सुष्मिता महाजन ने कहा कि ऐसे आयोजन साहित्यिक चेतना को जीवित रखने के साथ साथ नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। श्री ओम प्रकाश प्रजापति ने सभी अतिथियों, कवियों, साहित्य प्रेमी तथा सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मंच भविष्य में भी साहित्य, संस्कृति और समाज हित के ऐसे आयोजनों के माध्यम से रचना अभिव्यक्तियों को मंच प्रदान करता रहेगा। 14 जून को अलख राष्ट्रीय संस्कृत एवं शिक्षा ट्रस्ट गाजियाबाद के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में काव्य उत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के जाने माने कवि, गीतकार, गजलकार और साहित्यकारों के साथ साथ उभरते कवियों, कवित्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वश्री लक्ष्मी राज सिंह, गजलकार राज कौशिक, कवि मनोज कुमार मनोज, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय, रनिता सिंह, तिब्बा त्रिपाठी, कर्नल प्रदीप खरे, मंच का कुशल संचालन डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने किया। संस्था की संस्थापिका श्रीमती पूजा चौहान एवं सह संस्थापिका डॉक्टर गार्गी सिंह उपस्थित रही। कार्यक्रम भागीरथी पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के निदेशक श्री अमिताभ सुकुल एवं प्रबंधक श्री आनंदी शुक्ल का इस आयोजन को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। संस्था की संस्थापिका श्रीमती पूजा चौहान ने बताया कि प्रथम वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य काव्य उत्सव का आयोजन किया गया है। सर्व श्री उषा श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, सरिता गर्ग सरी, रक्षा सिन्हा, हिमांशु शुक्ला, संगीता वर्मा, यश शर्मा, आशु सिंह, स्वाति पूजा, प्रेरणा मल्होत्रा, जगदीश चंद्र वर्मा, सरोज दुबे, अपर्णा गर्ग शिव, शालिनी शर्मा, नीति मिश्रा, पूनम सिंह, नीरज त्यागी, रोहित कुमार, दीपक दीप, पूजा चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलग ट्रस्ट द्वारा दो बच्चों को शिवानी चौधरी और पूजा को शिक्षा के लिए अंगीकृत करते हुए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गान के उपरांत कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 15 जून 2026 को सादरा स्थित शशि पब्लिक स्कूल गया। कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसमें उपस्थित श्रोताओं ने रचनाओं का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि श्री प्रीतम सिंह प्रीतम ने की, जबकि कार्यक्रम का सानिध्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने प्रदान किया। मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ला उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि रामचरण सिंह साथी की रचनाएं जीवन के विविध रंगों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों को अत्यंत सहजता और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा श्री रामचरण सिंह के गीतों और गजलों की संगीत में प्रस्तुति। सुप्रसिद्ध गायक श्री दीपेंद्र दीपक ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में साथी जी की रचनाओं को स्वर देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री वीर सेन जैन सरल, श्री प्रदीप शर्मा, श्री चंद्रपाल भारद्वाज, कुसुम वियोग, राजेंद्र प्रसाद रंजन तथा श्री प्रकाश प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने रामचरण सिंह साथी के साहित्यिक अवदान की सराहना करते हुए उनकी रचनात्मक यात्रा को प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावशाली संचालन कवि श्री पी के आजाद ने किया। उन्होंने अपने सदे हुए संचालन से पूरे आयोजन को रोचक और गरिमामयी बना दिया। अंत में उपस्थित साहित्यकारों, कवियों, संगीत प्रेमियों और श्रोताओं ने इस आयोजन को साहित्य और संगीत का एक यादगार उत्सव बताते हुए आयोजकों की सराहना की। कार्यक्रम रचनात्मक सांस्कृतिक चेतना के वातावरण में संपन्न हुआ।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर पूजा भारद्वाज। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: साहित्य की अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800

0: किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, हमारे अतिथि।
1: नमस्कार। वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को डालकर, वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर, चलते रहे वक्त के साथ आंखों में आंखें डालकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे अतिथि कार्यक्रम में काजल का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है हमारे इस कार्यक्रम में, उनके लिए ये जरूर कहूंगी कि कला केवल रंगों और कपड़ों का संयोजन नहीं होती, बल्कि वो संवेदनाओं, कल्पनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। आज हम ऐसे ही एक सृजनशील व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डिजाइनों के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर सेतु निर्मित किया है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं जाने माने टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर चंद्रशेखर भेड़ा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है और अनुभव बड़ा रोमांचकारी हो रहा है।
1: सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस कार्य को लेकर, जिस काम में आप इतना लगन के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर, तो इस क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: बचपन में मेरे पिताजी भक्ति संगीत गायक थे। संगमनेर नाम की जगह से आया हूँ, वो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में है
1: जी।
2: संयोगवश अब वो अहमदनगर नहीं रहा, अभी उसको अहिल्यानगर कहा जाता है
1: जी।
2: तो मेरे लिए तो एक पहचान खोने जैसा है। लेकिन वहां पर जो मेरे पिताजी थे वो भक्ति संगीत गायक थे, उनका अपना ट्रूप था और वो जगह जगह जाकर के संगीत के परफॉर्मेंस करते थे। और उस माहौल में मेरी सारी परवरिश हुई, तो वहां पर एक क्रिएटिविटी का जो एक अनुभव है वो बचपन से रहा। मेरी जो मदर थी माँ, वो कपड़े सिलती थी
1: जी।
2: और उनके उनके साथ हम उनको मदद करते थे। उस वक्त जो सिलाई मशीन थी
1: जी जी।
2: वो हाथ से चलने वाली थी
1: जी जी।
2: तो वो दोनों हाथ से अपना कपड़ा सिलती थी, हम उनकी मशीन एक हाथ से चलाते थे। और धीरे धीरे फिर हम और भी ज्यादा समझ लो बड़ी लेवल पे गए, तब पेटीकोट बनाती थी, उस पेटीकोट की कलिया सिलने का काम भी हम करते थे
1: बचपन से ही।
2: हाँ, बचपन से। तो इन्हें इससे क्या हो गया कि एक जो क्राफ्टमैन की जो एक छोटी बड़ी जो परवरिश होती है वो वहां होती रही
1: जी।
2: और बाकी हमारे परिवार के लोग भी संगीत में ज्यादा रुचि रखते थे, तो हम हारमोनियम और तबला इसके साथ बड़े पले है। उसके साथ साथ मेरी मेरी रुचि चित्रकला के क्षेत्र में ज्यादा रही
1: जी।
2: तो परिवार ने खूब प्रेरित किया अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लेकिन भाग लेना ज्यादा जरूरी था, चाहे आपको उसका पुरस्कार मिले ना मिले, संयोगवश पुरस्कार भी मिलते गए, तो उससे प्रेरणा मिलती गई। और 12वीं के बाद ऐसा मौका आया कि मुझे एक साल का समय ज्यादा मिल गया, क्योंकि मैं मेरे एग्जाम दे नहीं पाया। तो उस वक्त हमने सोचा कि तुम्हारी कला की इंटरेस्ट है, तो आप एक कला के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले लेते। तो मैं वहां से पहली बार मेरे संगमनेर से नासिक गया और वहां एक साल का फाउंडेशन कोर्स किया। वहां मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, वहां मैं फर्स्ट आ गया। तो वहां से अब कहा तो बोला चलो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट चले जाते। नासिक में ये एक आर्ट कॉलेज रहा है।
1: अच्छा, वहां पे आप गए?
2: वहां पे मैंने फाउंडेशन कोर्स किया। सारे आर्ट कॉलेज में क्या होता है, ये फाउंडेशन कोर्स करना होता है, वो सारे सारे स्पेशलाइजेशन के लिए कॉमन होता है। तो एक साल में आपको बेसिक ड्रॉइंग, कलर्स और मटेरियल इनके बारे में अनुभव कराया जाता है। तो वहां पर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट चले जाइए।
1: अच्छा।
2: तो जब वहां गया तो मुझे, क्योंकि पहले मैं नासिक में पहला नंबर आया था, तो मुझे फटाक से एडमिशन मिल गया। आज तक आजकल मैं देखता हूँ लोगों को एडमिशन के कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो हमें तो बड़े आसानी से एडमिशन मिल गया। तो वहां मैंने मेरी टेक्सटाइल डिजाइन की, वहां खत्म करने के बाद फिर इसमें मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पिताजी का देहांत हो गया।
1: अच्छा।
2: तो उस वक्त एकदम समस्या आ गई क्या करें। तो मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम एनआईडी के लिए तैयारी करो, और उन्होंने फॉर्म भरवाया और मैं एनआईडी के एग्जाम दिया। एनआईडी का एग्जाम मिल गया और एनआईडी का एग्जाम देने के बाद वहां देखा तो वहां भी मेरा एडमिशन आराम से हो गया। और सारे भारतवर्ष से सिर्फ चार लोगों को एडमिशन,
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन,
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन,
1: बहुत बड़ी बात।
2: तो ये टेक्सटाइल डिजाइन का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सिर्फ चार लोगों को एडमिशन, दिल्ली की तीन लड़कियां थी और मैं

0: महाराष्ट्र से था,
1: बाहर से।
0: उस वक्त क्या था कि अगर अच्छे आपको कैंडिडेट्स मिलते तभी एडमिशन होते थे, नहीं तो कई बार बैचेस खाली भी जाते थे। तो वहां पर एडमिशन मिलना सच्ची में अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जब मेरा एडमिशन हो गया तो मैं पीछे हट गया। मैंने परिवार को बोला नहीं मैं काम करना चाहूंगा, कुछ पैसे कमाना चाहूंगा। पिताजी गुजर गए तो मेरे बड़े भाई ने मेरे पीछे खड़ा रह के बोला कि आप गलती नहीं करोगे, तुमको यहाँ मौका मिले, यू आर द लकीस्ट पर्सन एंड यू डिजर्व इट, दैट इज व्हाई यू गॉट इट। तो आप यहाँ जाइए, पढ़िए, कुछ चिंता ना करिए घर की। वो एक बड़ी अच्छी दिशा मेरे भाई ने मुझे दी, मेरे मदर ने भी बड़ा सपोर्ट किया और वहां मैंने पढ़ाई करी। तो इस तरह से डिजाइन क्षेत्र में मैं आ गया और वहां से और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मुझे करना सिखाया और एनआईडी ने मुझे क्या नहीं करना सिखाया।
1: तफसील से बताइए।
0: जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था कि हम हमारा 9 बजे से लेकर के दोपहर में 3-3:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी और उसके बाद मैं कसारा में रहता था। कसारा वो वहां से 2.5 घंटे दूर। शुरू में हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला तो मैं 2.5 घंटे अप एंड डाउन करता था। तो 2 महीने के बाद मुझे एडमिशन मिल गया वापस हॉस्टल में। तो वहां पर पढ़ाई करने के बाद हम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, वहां जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से जाकर के जहांगीर आर्ट गैलरी में बैठते थे और वहां पर गणमान्य लोगों की प्रदर्शनियां, उनकी कलाएं देखते थे। तो वहां पर ना उन सारी प्रतिभाओं को देख करके बहुत प्रेरणा मिलती थी, हमें कुछ करना चाहिए। तो यू शुड बी डूअर। वहां से जब एनआईडी में आ गया तो एनआईडी में रिलेवेंस सिखाया गया कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है।
1: बिल्कुल।
0: और जब औचित्य हो जाएगा तो उससे फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो चीज बनाई उसका उपयोग कहाँ होगा।
1: बहुत खूब।
0: तो वहां पर सुंदरता और कलात्मकता का अनुभव रहा, यहाँ पर औचित्य का अनुभव रहा। तो उससे उससे क्या हो गया कि आपको लोगों की जरूरतों को पहचानने की आदत डाली गई, वो क्षमता आ गई कि आपको समझना है कि कहाँ तुम्हारे काम की जरूरत है, कहाँ पर आप किसी की जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी ला सकते हैं। दैट इज डिजाइन कि आपको उपयोगिता का भी ध्यान रखना है, सुंदरता का भी ध्यान रखना है। तो ये जो बैलेंस है, तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की पढ़ाई और एनआईडी की पढ़ाई से का जो मिश्रण हुआ वो मुझे लगता है मेरे लिए एक आशीर्वाद के जैसे।
1: बिल्कुल। यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अपनी जर्नी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, तो आप बचपन से ही इस लाइन से जुड़े, कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि मुझे ये करना है, वो पैशन की बात आ जाती है। और कहते हैं ना कि जब पैशन हो तो पैशन आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि सिलाई मशीन से आपने शुरू किया, मम्मी के साथ हेल्प करते थे, उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे आपने इतने आयाम एनआईडी आपने ज्वाइन किया और हर जगह आपको बहुत सफलता मिली। तो क्या कहेंगे, पैशन तो बहुत जरूरी चीज होती है। क्या
0: बिल्कुल कहेंगे? आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, पैशन होना जरूरी है और खास करके बचपन में ना आपका परिवार का साथ
1: बहुत
0: आपके साथ
1: है।
0: वो बहुत बहुत मायने रखता
1: है।
0: कई बार क्या होता है परिवार में बड़े लोग होते हैं, नहीं आपको इंजीनियरिंग करना है या आपको बैंक में जाना है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप अपने बच्चे की रुचि जाने बगैर अगर उसको किसी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक अनबन सा रह जाता है और कई बार बच्चे असहाय महसूस करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मजेदार बात आपको कहता हूँ कि घर में यह माहौल रहा और मेरे पड़ोस में एक साइन बोर्ड पेंटर की फैमिली रहती थी। मेरा बचपन का स्कूल के बाद का टाइम उस साइन बोर्ड पेंटर के यहाँ बैठे रहता था। और उस अनुभव में मैं उनको उनके बोर्ड के ऊपर लिखाई करते हुए देखता था। तो किसी को काम करते हुए देखना जो एक अनुभव होता है ना,
1: उससे भी आदमी बहुत कुछ सीखता है।
0: उससे बहुत कुछ सीखता है। और मजेदार चीज आप देखोगे हमारे भारतवर्ष में जहां भी इस तरीके के साइन बोर्ड पेंटिंग करने के लोग होते हैं, ज्यादा करके इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है। वो क्या कहते हैं, विजुअल लिटरेसी उनकी अच्छी होती है,
1: लेकिन सही बात,
0: लेकिन पढ़ने वाली नहीं होती है। तो मुझे क्या था, मैं पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा था तो मैं जाकर के उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कर रहा था। तो उनको भी मेरा वहां पर बैठना बड़ा अच्छा लगता था। ये मैं पता नहीं ये तुम्हारी मात्रा गलत नहीं, इसको ठीक। कई बार मैं तो इंतजार करता है पहले करते फिर बाद में बताओ
1: क्या बात। बहुत खूबसूरत।
0: तो वहां पर ये सारी और साथ में साइन बोर्ड पेंटिंग के साथ साथ वो सुनार भी थे।
1: अच्छा।
0: तो वहां पर सोने की और चांदी के जेवरात बनते थे, उसकी तार मोटी मोटी सलिया को तार कैसे बनाना है, वो जो सारी क्राफ्टमैन की जो सारी एक्टिविटीज होती है ना उसको बहुत ही बारीकी से देखा है और उनकी मदद भी करते थे। दूसरी तरफ से तार पीछे खींचते थे गरम गरम। तो ये सो सारी चीजें थी ना, उस वक्त नहीं पता था लेकिन आज मालूम होता है कि वो सारी चीजें इस नींव को डालने में बहुत ही उपयोगी रही,
1: बहुत असर डाला है उन्होंने।
0: और हमने

0: Spotlight.
1: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
2: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
3: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
2: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं

0: थोड़ी जानकारी दें।
1: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक के 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, तो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय में, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है, और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
0: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
1: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग, कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया, लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस, बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो

0: वहां पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा और वहां के कॉरपोरेशन और वहां के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई, हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भाई सीएसआर फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,46,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड है तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति, अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है।
2: استمعنا ايها الساده الى الركن الخاص لهذا البرنامج وهو سبوت لايت باللغه الانجليزيه وقد حان الوقت أن نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. يحتفل اليوم باليوم الدولي لليوغا لعام 2026 في جميع أنحاء العالم ويصادف هذا العام النسخة 12 من هذا اليوم الدولي حيث يأتي تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية بمعنى الشيخوخة النشطة والكريمة. وقد أقيمت الفعالية الرئيسة في موقع ريد رود التاريخي بمدينة كولكاتا في ولاية بنغال الغربية حيث قاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأمة في ممارسة بروتوكول اليوغا الموحد. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية اليوم عن إغلاق مضيق هرمز مجددا مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وما وصفته بسوء النية الأمريكي والفشل في الوفاء بالالتزامات الرامية إلى إنهاء الصراع. وفي بيان بث عبر التلفزيون الرسمي حذرت القيادة من أنه تم إعداد تدابير إضافية في حال

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी

0: कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodak and INS Agraye in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
4: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12:10 हुए हैं। अब सुनिए ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृह से संबंधित सभी ताने बानों के साथ ग्रामीण महिलाओं और हमारी प्यारी सखियों से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में मैं हूँ रेणु तंवर और मेरे साथ
1: कमलेश मुद्गल और हाँ। स्वीकार कीजिए हम दोनों का
0: प्यार भरा राम राम, राम। तो भाई आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, आज बहुत खास दिन है, आज है 21 जून। और 21 जून खास क्या है, या आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों, पहले तो ये बताइए। कमल,
1: देखिए चमक तो हमेशा रहती है पर आज आपने महसूस की है क्योंकि आज का दिन है बड़ा खास, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही सभी लोग लग गए हैं योगा करने के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो आज आपने अपनी आदत बनाई है उसको पूरी उम्र अपनी आदत में शामिल रखिएगा जिससे कि आप स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल, और स्वस्थ रहने का कई तरीके थे, लेकिन कहते हैं ना योग एक ऐसी चीज है जो आपको मन और तन से स्वस्थ रखती है, और जब मन स्वस्थ रहता है तो सब कुछ स्वस्थ रहता है, दिल दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है, और काम जब करता है तो हर काम अच्छा लगता है और जीवन उतना ही खुशहाल लगता है। क्यों कमले जी?
1: और मैं तो यही कहती हूँ कि जब हम योग की बात करते हैं तो कहते ना योग मतलब जमा। जमा क्या? जमा ये है कि हमें अपने अंदर अच्छी आदतें भी तो लानी है ना। केवल हमने मान लीजिए आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली, आधा घंटा हमने बोल दिया कि प्राणायाम कर लिया, व्यायाम कर लिया, और उसके बाद जब हम परिवार के सदस्यों से मिलते हैं तो हर परिवार का सदस्य हमसे दूरी ही बना के रखता है। अरे इनसे बात करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे इनसे इस बात में राय लेंगे तो ये हमें ढंग से राय नहीं देंगे। तो हमें कैसा बनाना है अपना जीवन? हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है कि कोई भी हमसे बात करने के लिए उतावला रहे, कि हाँ इनसे अगर हम अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। और जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है तो हर कोई खिंचा चला है।
0: बिल्कुल, और इसी पर ना हम आज कहते हैं ना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, और इस भव्य आयोजन का जो मुख्य समारोह था वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ऐतिहासिक रोड पर आयोजित किया गया। तो इस पर जहां बहुत कुछ हुआ, तो चले सुनते हैं इस पर एक बाइट।
1: बिल्कुल, और जो बाइट है वो किसकी है तो वो हम बताते हैं।

0: कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाइट हम आप बहनों को सुनवा रहे हैं।
1: एमएल जाट डीजी एवं सेक्रेटरी डेयर आईसीएआर पूसा नई दिल्ली से।
2: विश्व योगा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज विश्व योगा दिन का जो सेलिब्रेशन किया गया, पूरे देश में सभी लोगों ने योग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को इस दिन पे संबोधन किया और यहाँ पे आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस प्रांगण में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट इकट्ठे होके आज यहाँ पे योगा किया। हम लोग तो खेती के बारे में काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, और मुझे लगता है कि योगा की बात करते हैं और खेती किसानी भी एक बहुत बड़ा योगा है। आज का योगा सिर्फ एक दिन का योगा नहीं, इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया योगा 365, तो योगा हर दिन करना है। और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, कृषि में तो रोज़ योग वैसे भी करना है। आज के इस योग दिवस पे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
0: और जब हम बात करते हैं योग की, तो हमारी बहनें भी सुन रही हैं ये कार्यक्रम, और उन्हीं का अपना कार्यक्रम है, वो क्यों नहीं सुनेंगी। और जब हम बात करते हैं, हमारी बहनें पता है क्या कहती हैं, कहती है भाई सारा दिन तो हमारा योग होता है, इधर जाओ उधर भागो, इधर रसोई का काम करो, उधर खेत खलिहान का काम करो, फिर बच्चों को संभालो, उसके बाद में ढोर डांगरा का करो, हमारा तो जी योग हो गया।
3: लेकिन ऐसा नहीं है कमलेश जी, बिल्कुल ऐसा नहीं
0: है,
1: क्योंकि काम तो अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग करने से कहता है, और आप पता है इस बार जो बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इस पर कुछ थीम भी थी।
0: अच्छा, वैसे तो रेनू पता है जो हमारे बुजुर्ग बहने ना, वो कहती है अरे तुम क्या रेडियो पे बैठ के योग कर रही है, बढ़ती उम्र में कौन योग करेगा, हम तो अपने पोता पोती और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें बालकों को पालने वही ठीक है
1: ना बाबा ना। अच्छा? इसीलिए तो इस बार यही थीम रखी गई कि जब बढ़ती उम्र के प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है, बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक रूप को स्वस्थ और सक्रिय बनाने के लिए इसका थीम रखी गई, स्वस्थ आयु के लिए योग।
0: बिल्कुल, आयु आपकी जो भी हो, अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो आप उस पूरी आयु को भले प्रकार से जी पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारे जो बहनें हैं वो जब योग करती हैं तो एक मानसिक रूप से भी वो सबल रहती हैं, क्योंकि केवल योग का मतलब ये होता है कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल कर बैठे हैं, नहीं तो ये होता है हमने पूरे परिवार के लिए ये काम करना है, वो काम करना, और हम अपना जो काम है वो भूल जाते हैं। अपना क्या काम है, अपने आप को स्वस्थ रखना। कभी सोचा है जब हम बीमार होते हैं तो हम कितने एकदम डल महसूस करते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद एक छोटी सी बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, काजल डाले, तो अपने आप को ना एक एनर्जेटिक महसूस होता है। कभी महसूस किया? करके देखना, क्योंकि मैंने किसी के कहने पर करके देखा है।
1: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि योग कितनी भागदौड़ वाली जिंदगी हमने बना ली, हर वक्त हम भागते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। और संतुष्ट करने के लिए ना, मन को कहते हैं ना कि उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है योग करना, और हम महिलाओं के लिए तो बेहद जरूरी, क्योंकि वो घर बाहर बच्चे हर किसी को संभालती है, तो उसे सबसे ज्यादा अपने मन को संभालना भी जरूरी है।
0: और अगर आपका मन संभला रहेगा तो आपके घर का कोना कोना भी महकता रहेगा।
1: और कुछ नहीं है कमलेश, बैठ के ना अलोम विलोम कर लो, आप किचन में भी करो, थोड़ा बहुत सांसों को कहते ना थोड़ा लंबा लें और छोड़ें, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
0: और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ, एक गिलास पानी अपने सामने रखो और उस पानी को भी केवल घूंट घूंट करके पियो। सोचो कि पानी गर्म है, क्योंकि ठंडा पानी तो हम एक बार में एक घूंट में पी जाते हैं।
1: और साथ में एक बात तो और कमलेश, एक बात की अगर हमारी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं तो इस वक्त भी आप आराम से अलोम विलोम कर सकती हैं, तो हमारा प्रोग्राम भी सुने और अलोम विलोम भी करें।
0: बिल्कुल, अगर नहीं आता हो तो हम आपको बता दें कि सांसों का आना और जाना, धीमी सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब आराम से अपने सांसों पर ध्यान रखना है, मतलब अपने आप से मिलिए,
3: आपसे सुंदर कोई भी नहीं है, हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं।

0: आज की दौड़ती भागती जिंदगी की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि जब हम अपने रुपए पैसे का हिसाब रखते हैं या रुपए पैसे की बात करते हैं, कहते हैं हम तो बड़े सुखी हैं। भैया रुपए पैसे तो हर कोई सुखी होगा, और जब हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम बड़ा उसे सोच समझ कर खर्च भी करेंगे। लेकिन एक बात तो है, जैसे पहले हमारी दादी नानी करती थी कि भैया थोड़ा पैसे यहाँ संभाल के रख दिया, थोड़ा यहाँ संभाल के रख दिया, और फिर एक बटुआ ले जाते थे, फिर उसमें भी बैग में देखते थे कि यहाँ पर इतने पैसे रखे हैं, और दिमाग में रखना भी पड़ता था भैया 100 रुपए के नोट कहाँ है 50 के का।
1: वो कहते ना हर हमारी माए जो है बटुआ लेके घूमा करती थी, लेकिन अब हम सब क्या लेकर घूमते
0: हैं? मोबाइल लेकर घूमते हैं, मोबाइल बटुआ हो गया आजकल तो।
1: बिल्कुल, आधा बैंक तो हमारा मोबाइल हो चुका है कि मोबाइल के जरिए हम अपने पैसे का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ना बचत करना किस तरीके से, हम हमारे फोन के माध्यम से भी हम बचत बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे डिजिटल भुगतान की अगर बात कही जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हमें खतरा नहीं होता कि भाई ये पैसा मेरा इधर उधर ना चला गया और बटुआ खो तो नहीं जाएगा, तो ये है कि लेकिन फोन ना खो जाए इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और कितने सारे ऐप हैं इनके माध्यम से हम जो भी भुगतान करने होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन रेनू एक बात तो है, अब मैं भी ना कई बार डरती हूँ और भुगतान नहीं कर पाती हूँ, और कुछ मेरी तरह से और भी बहने हैं उनको भी डर लगता है कि भाई हम पैसा जो है कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि एक दो के साथ अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर उनको लगता है हमारा पैसा तो गया, और जिसके पास पैसा जाता है वो फिर

0: बस तो देगा नहीं।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ कहते हैं ना, आर्थिक साक्षरता का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वो सही जगह आप भेज पा रही हैं नहीं भेज पा रही हैं। तो इसके लेन देन के लिए एक सीमित होती है, यूपीआई मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आप भुगतान तो करती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सही जगह कर रही हैं, क्योंकि कई बार होता है ओटीपी आता है और हम बहुत जल्दी जल्दी में ना दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना ओटीपी, बैंक पासवर्ड और यूपीआई पिन किसी के साथ साझा ना करें।
0: बिल्कुल, और ये बार बार हम लोग भी कहते हैं और जितने भी मीडिया वाले लोग हैं सब बताते हैं भी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और सबसे बड़ी बात तो हमारी जो महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हो गई हैं, और सबसे एक और अच्छी बात कि जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, उन बहनों को भी मैंने देखा कि फटाफट जो है उनके पैसे हैं उनके उसमें आ जाते हैं, और फिर उनको पता चल जाता है कि भाई हमारी जो है कितनी सेल हुई है, हमारे पास कितना पैसा आ चुका है, और जो सामान हमने खरीदना है वो कौन सी दुकान से खरीदना, और वहां पर भी हमने कैसे उनको यूपीआई के माध्यम से या पे के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हमने उनको पैसा कैसे ट्रांसफर करना। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ बैठे हैं, गांव में अगर किसी को जरूरत पड़ गई है तो शहर से जो है गांव में पैसा
1: दे सकते
0: हैं। तो पहले कितनी टेंशन हो जाती थी, कभी इससे बोलना पड़ता था, कभी उसको बोलना पड़ता, फिर कहते भैया आप दे देना, हम आके आपको दे देंगे, या हम आपके आपको पैसा जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो सुविधा है, यानी जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं तो उस तरक्की का फायदा भी हमें
1: बहुत
0: है।
1: और जिन महिलाओं को इसका ज्ञान नहीं है, हम बता दें कि आप अपना बैंक खाता सक्रिय कर रख सकते हैं, मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं, और एक विश्वसनीय यूपीआई ऐप का उपयोग करना सीखें, और नियमित रूप से अपने बैंक के खाते की जानकारी और लेन देन की जांच करते रहें। तो ऐसे कई डिजिटल भुगतान का उपयोग आप शुरू कर सकती हैं, और सबसे ज्यादा आर्थिक साक्षरता जरूर ध्यान रखें कि पैसे कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि पैसे का सही तरीके से कैसे आपको प्रबंधन करना है, कैसे आपको लेन देन करना है उसका ध्यान रखें, किस तरह से निवेश करना वो ध्यान रखें। और हमारी महिलाएं इतनी समझदार हैं कि आर्थिक रूप से वो किसी भी तरीके से कैसे रहें, लेकिन उन्हें जोड़ना अच्छे से आता है, और पूरे परिवार और समाज को वो एक सकारात्मक प्रभाव भी देती है।
0: और जब सकारात्मक प्रभाव रहता है, लेकिन देखो रुपया तो रुपया है, या वो आप

सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती।

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार।
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार, रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय की कहे, की कहे, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
0: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ, जा घोड़ा ले आ, कर जाने की तैयारी, कर जाने की तैयारी, हीरे की हसली।

0: हाय नैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: नमस्कार। आज विश्व योग दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं, योग हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और योग से जो फायदे हैं वो हर आयु वर्ग के लिए हैं, हर लिंग के लिए हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए ये आवश्यक है कि वो योग से जुड़े, योग से जो फायदे हैं उसको अपना सके। महिलाओं की अगर खास तौर पर बात करें तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए किस तरह के योग, जो योग साइंस है, जो एक पूरा विज्ञान है योग का, वो प्रिस्क्राइब करता है। इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन जी। हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गुलशन जी।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में जब हम योग के योगदान की बात करते हैं तो ऐसा क्या है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए क्या योग ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन है?

0: माध्यम है, शरीर में हार्डनेस आ रही है महिलाओं के, और शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए योग की अहम भूमिका है। महिलाओं के शरीर में कई बार कुछ बदलाव आते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, तो इन सब पीड़ाओं से मुक्त करने का जो माध्यम है वो योग है।
1: अगर योगासन की बात करें खास तौर पर, तो जो अलग

0: करें तो शरीर में जो बेचैनी होती है हॉट फ्लैशेस की वजह से, उसमें काफी आराम आता है और रात की जो नींद की क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाती है।
1: ये तो बात हुई रजोनिवृत्ति के बाद जो महिलाओं में समस्याएं आती हैं। अगर इसके पहले के चरण में चलें तो जो मध्य वय की महिलाएं हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं 25 से लेकर 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, उनके भी जीवन में आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से और फिर पारिवारिक दायित्वों के हिसाब से माँ बनने के क्रम में

किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के

0: आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: तो अभी हम सुन रहे थे 23वें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

0: कमलेश जी, अगर हम बात करें हमारे आयुष मिशन यानी कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की, तो भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य होता है कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ करना और जन जन तक पहुंचाना।
1: बिल्कुल, और इस मिशन के माध्यम से आयुष अस्पतालों और जो औषधालय है उनका विकास किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है और लोगों को आयुष पद्धतियों के बारे में जानकारी
0: दी जाती है। बिल्कुल, और गुणवत्ता ही बढ़ाई जाएगी और औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को प्रोत्साहित करना भी इसका मिशन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि किसानों को आय के नए अवसर भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल, और उनका जो कच्चा माल है वो भी समय पर उपलब्ध हो जाता है। और इसी के साथ हम बात कर लें भारत की वीरांगना क्रम में, तो आज हम बात करेंगे उषा मेहता के बारे में, जो गांधीवादी और स्वतंत्र कार्यकर्ता थी। राष्ट्रवादी गीत और जो अधिकारियों के जो एक भाषण थे वो एक खुफिया रेडियो स्टेशन के माध्यम से प्रसारित किए जाते थे, क्योंकि जो बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं जब तक हम अपने श्रोताओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे पता चलेंगे। तो उस समय पर ये काम जो थी वो उषा मेहता ने किया था, और 3 महीने के बाद उनको फिर जेल की यात्रा करनी पड़ गई थी, और उन्होंने आजीवन खादी पहनी थी और सामाजिक कार्यों से वो जुड़ी रही।
0: और 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की कार्यकर्ता रही और इसी के बाद हम इनको शत शत नमन करते हैं और सुनते हैं ये वाला नगमा।
1: और इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि जो हमारा कार्यक्रम हमारी बहनें सुनती हैं और समय समय पर जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको ये भी बता दें कि आज विश्व संगीत दिवस भी है, क्योंकि इतने सारे दिवस हैं तो मुझे लगा कि पहले उनको जो है ये बताना चाहिए।
0: बिल्कुल, और संगीत से मन और तन दोनों खुश रहता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप सुनते हैं हमारे संगीतों को और संगीत के साथ साथ जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो आप तो पता ही है कि हमारा यही उद्देश्य होता है कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और घर बैठे ही इसका ज्ञान भी लें, साथ साथ संगीत का एक कहते हैं ना मन खुश करने वाले हम गीतों का बहार भी लेकर आते हैं, चाहे वो फिर वो लोक गीत हो, रागनी हो या फिर हमारे बॉलीवुड से संबंधित गीत हो।
1: बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज फादर्स डे भी है और जून के तीसरे रविवार को अपने पिता के प्रति मान सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इस दिन को जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज का जो दिन है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी है, इसमें समुद्र के नक्शे और हाइड्रोग्राफी के महत्व को बताता है और ये भी बताता है कि वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और ये दिवस भी

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।
1: और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जितना हमें ज्ञान हम कहीं से भी लेकर बटोर कर आते हैं या अपना ये देखते हैं कि अपनी बहनों को क्या क्या बताया जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: और समय कम, हमें लगता है कि समय कम है।
1: इसके साथ साथ हमें भी जानकारी मिलती है
0: बिल्कुल।
1: और जब हम आप बहनों के समक्ष आते हैं तो देखो ऐसे ही नहीं आ जाते, पूरी जो है वो टीम वर्क होता है।
0: हाँ।
1: और उस टीम वर्क की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है वो है तुषार पाराशर और
0: संयोजक है वो है शिव नंदन लाल।
1: और हमारा जो पता है वो है
0: जी, हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नया प्रसारण भवन नई दिल्ली 110001 और ईमेल आईडी feedback@fnh.gmail.com।
1: और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने विचार जरूर बताएं क्योंकि आपका अपना ये कार्यक्रम है, उसी पर चार चांद लगेंगे यदि
0: आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें
1: बताएंगे। और
0: इसी के साथ हमारा आज का गृह लक्ष्मी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से सुनने वाले सभी बहनों को हमारा राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने को है अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री

0: मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agraye in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
2: Bharat aaj apne pure maritime ecosystem ko sasakta bana raha hai. इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "Yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit." President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Addressing the event, the president said, "Yoga is a celebration of India's great tradition." She said yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities.

श्वेता लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। और बहुत सारे लिसनर्स ने हमें संदेश भेजा है, जिनमें से हैं राजकुमार डूडी और अजीत भावसर, नवाब खान, देवशंकर तामुरिया, सुदर्शन मुखी,

दिग्दर्शन गौर और उनके साथी जिन्होंने सही पहचाना. जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं, ऐसी फिल्म जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो अपने बेहतरीन गीतों के लिए जानी जाती है. मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी, डेनी डेंजोंगपा, असरानी और बिंदु मुख्य भूमिका निभाते हैं. ये फिल्म 1973 की हिंदी फिल्म आ गले लग जा का रीमेक है. बॉक्स ऑफिस पर ये बहुत बड़ी हिट थी. 1985 में ही ये तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इसके गीत भी काफ़ी लोकप्रिय थे. श्रोता, अगर हम इस फिल्म के बारे में बात करें और इनके कुछ तथ्यों के बारे में बात करें, तो ये जो फिल्म थी वो निर्माता केसी बोकाडिया ने पहले इस फिल्म को ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी को ऑफर किया, लेकिन जो ऋषि कपूर थे उनको इसकी कहानी फिल्म बॉबी जैसी ही लगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया. बाद में फिल्म की भारी सफलता को देखकर उन्हें छोड़ने का बहुत अफसोस हुआ था. और क्यों ना हो, ऐसी फिल्म कौन सी कलाकार ना ही करना चाहेंगे. तो श्रोताओ, चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये अगला गीत लता मंगेशकर की मधुर आवाज में.

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो प्रीति यानी पद्मिनी कोल्हापुरी एक समृद्ध लड़की है जो एक माध्यम वर्ग से फोटोग्राफर अजय यानी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार कर बैठती है। उसके माता पिता शुरुआत में विवाह के लिए असहमत थे, लेकिन बेटी उन्हें शादी के लिए तैयार करने का प्रबंधन करती है। प्रीति के पिता भान यानी डैनी अजय को एक शीर्ष श्रेणी के फोटोग्राफर बनाते हैं और उनका वेतन बढ़ाते हैं। बाद में अजय ने जब पता लगाया कि भानु ने उसकी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया तो वो प्रीति और अजय अलग हो जाते हैं। प्रीति और अजय दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। भानु उन्हें अपने कारण की गई गलतफहमी से तलाक दिलाता है। भानु ने अजय को विश्वास दिलाया कि प्रीति तलाक चाहती है और इसके विपरीत भी किया। जब प्रीति को अजय के बच्चे के साथ पाया गया है, भानु अजय को ये नहीं बताता है और इसके बजाय उससे शिमला में प्रीति को ले जाता है ताकि कोई भी ना जान पाए कि उसने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल वो पूरी कोशिश में थे कि शादी के बाद भी उन्हें किस तरीके से दोनों को अलग किया जाए।

श्रोताओं, जब अजय मिलता है भानु से अस्पताल में तो उसे पता चलता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया और भानु उसे ये बच्चा देना चाहता था, लेकिन इस शर्त में कि प्रीति को ये पता ना चले कि ये बच्चा अभी भी जीवित है, इसलिए वे अनाथालय में ना देकर वो अजय को दे देता है। कहानी कुछ सालों तक आगे बढ़ती है और प्रीति नहीं मान रही है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिरता जारी होती है। वह अपने हाथों में गुड़िया रखती है, मानती है कि वह उसका अपना बेटा है। उसके माता पिता तेजी से चिंतित हो जाते हैं, हालांकि प्रीति कुछ सुधार दिखाती है जब वह एक तस्वीर देखती है जिसे उसने शिमला में खींचा था जब वह अजय के साथ थी। माता पिता उसे वापस शिमला ले जाते हैं। अजय शिमला में रहता है और अपने बच्चे को उसने खुद ही पाला है। एक मौके पर बच्चा प्रीति से मिलता है और दोनों के बीच एक लगाव हो जाता है।

अजय की मदद से बाद में वह उसे अपनी माँ के रूप में पहचानता है। वह उसके पास लौट आया और उसे अजय के पास ले गया और उन्होंने अपनी गलतफहमी को दूर किया। दोनों भानों के कारण उनके दिमाग में गलतफहमी का पर्दाफाश करते हैं। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को सुलझाने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और उसके बाद अपने बच्चे के साथ वे खुशी खुशी रहते हैं। इसीलिए तो इस फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

एक्शन इमेज वाले मिथुन को रोमांटिक रोल में देखने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने से डर रहे थे। यही वजह थी कि ये बनकर तैयार होने के बावजूद भी ये फिल्म पूरे 2 साल तक रिलीज नहीं हो पाई। बाद में निर्माता बुकाडिया ने इसे खुद रिलीज करने का फैसला किया और उनका ये जो डिसीजन था वो भी बिल्कुल सही था। ये फिल्म सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर हासिल हुई। इस फिल्म के गीत भी तुमसे मिल करना चाहने के और वो दिल भर जानिए बहुत बड़े हिट हुए थे। एचएस बिहारी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इसके गाने थे। फिलहाल श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बस इतना ही।

श्रोता, हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रकाश वर्मा की छत्तीसगढ़ पलारी से। इनके साथ है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। अगला संदेश है संदीप मकर का। आर कुमार भी हमें लिख कर भेज रहे हैं। इनके साथ है आदि अरोड़ा, पिंकी, लवली, मिंटू।

थॉमस पंजाब से। और जो अगला संदेश है वो है फागुराम यादव की, इनके साथ है ज्योति यादव और जस्वी यादव संबलपुर कांकेर से। संदीप मक्कर हमें लिखकर भेज रहे हैं, साथ ही पी एस नाहकर, और इनके साथ है निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान टाइडे और आशीष। भागवत वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं, सोमदत्त लिखकर भेज रहे हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से, हीरा राममणि वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं और उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अगला जो संदेश है वो निसार अली का। स्वर्ण सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है गुरनूर गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और राजदीप सिंह और इनके अन्य साथ ही शमसुल कमर हमें लिखकर भेज रहे हैं, संजय ढींगे हमें लिख कर भेज रहे हैं, बिट्टू गजनीचा, सुदर्शन मुखी, धर्मेंद्र चीपा राजस्थान से, भूषण खेड़ा। और जो अगला संदेश है वो है अनिल मोहन का। संदीप मक्कर हमें लिखकर भेज रहे हैं और अन्य साथियों का भी संदेश आ रहा है, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी कमी है जिनका नाम हम नहीं शामिल कर पाए इस कार्यक्रम में, उनका नाम हम जरूर शामिल करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे इस कार्यक्रम को लेकर ठीक 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

सफर है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 1:40 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार, उसके बाद आप सुन सकेंगे उर्दू में।

0: सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरीसन ग्राउंड पर योगासन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क़यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्दा योग तंजीमें इस तकरीब में शामिल हुईं, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। रियाज में भारतीय सिफारत खाने ने कल सऊदी योग कमेटी और मुकामी इदारों के साथ मिलकर प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में योग से मुतालिक तकरीब मुनक़िद की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने शिप बिल्डिंग शोबे के लिए एक नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाज़ों के डिज़ाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिज़ाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाज़ों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निज़ाम को मुस्तहकम बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने कई पॉलिसी इसलाहात की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अंदरून मुल्क तामीर करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर खसूसी इकदामात किए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इन जंगी बहरी जहाज़ों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ दिफाई सामान की तैयारी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो खौफ होकर इम्तिहान दें। अमरीका के नायब सदर JD वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ

0: इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में इसराइली हमलों की वजह से अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज से लेकर बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में दाम्बुला में तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर धुआंधार 94 रन स्कोर किए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज योग के 12वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecast extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India have set a target of 378 runs for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla. Vaibhav Suryavanshi smashes fastest half century of List A format in just 11 balls. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
2: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: Highlighting the International Yoga Day theme for the year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit.
2: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our

0: to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक

0: योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
1: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000

0: करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में

0: पर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ, हम भी आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म आंधी जो कि 1975 में आई थी और इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने, बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और संगीत आरडी बर्मन ने दिया है। और ये फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा रोल था हमारे आज के कलाकार रहमान साहब का। बहुत कुछ करेंगे, उनके बारे में बातें, उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार।

सच में हमारे जो आज के कलाकार हैं रहमान साहब, वो जिस भी फिल्म में आते थे, भले ही उनका रोल विलेन का ही क्यों ना हो, लेकिन उस फिल्म में वे अपने किरदार में इतना नूर भर देते थे कि दर्शक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। जी हाँ, आपको याद ही होगा चिनॉय सेठ, ये किरदार कितना फेमस हुआ था और इस किरदार को निभाया था सैयद रहमान खान ने, जिनका जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में एक पठान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से किया। इसके बाद 1942 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में भी वे शामिल हुए थे, लेकिन उनकी दिली इच्छा थी फिल्मों में करियर बनाने की और इसके साथ ही उन्होंने एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब को छोड़ दिया और फिल्म कंपनी प्रभात, एक फिल्म कंपनी थी, उससे सहायक निर्देशक के रूप में जुड़ गए और अपनी पहली फिल्म चांद से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं रहमान साहब की ही एक फिल्म।

1962 में रिलीज हुई फिल्म साहेब बीबी और गुलाम। इस फिल्म से आप आशा भोसले जी की आवाज में सुन रहे हैं ये प्यारा सा गीत। और इस फिल्म में हमारे आज के कलाकार रहमान साहब की एक बड़ी और प्रमुख भूमिका थी।

साहेब बीबी और गुलाम इस फिल्म में उन्होंने एक अय्याश और जमींदार छोटे बाबू की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें बेहद सराहना भी मिली थी।

और इसी बीच आपके संदेश ईमेल के माध्यम से लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और एक ये संदेश आया है दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा का, और इन्होंने लिखा है कि आज आप सैयद रहमान खान साहब पर केंद्रित कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि हमें बेहद पसंद आ रहा है। आप जो उनके फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं और उनके बारे में रोचक जानकारी दे रहे हैं वो भी हमें अच्छे लग रहे हैं। यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

दोस्तों, अभिनेता रहमान ने अपने शानदार करियर में 150 से भी अधिक फिल्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और अगर उनकी भूमिका के बारे में बात करें, एक बहुत ही अच्छी सी दिल को छू जाने वाली फिल्म आई थी गुरुदत्त साहब की प्यासा, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। इस कल्ट क्लासिक फिल्म में उन्होंने एक मतलबी और अमीर प्रकाशक घोष बाबू का यादगार किरदार निभाया था। इसी तरह से चौदहवीं का चांद, ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसमें गुरुदत्त और वहीदा रहमान के साथ इस फिल्म में रहमान साहब ने नवाब का किरदार निभाया था, जो बेहद ही पॉपुलर हुआ था। तो दोस्तों, इसी बीच आपके कुछ संदेश और हमारे पास आ गए हैं, आइए उनको शामिल कर लेते हैं। ये हमारे एक नियमित श्रोता हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है, आदरणीय अरुणेश द्विवेदी, सादर प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। और इन्होंने आगे लिखा है कि हमारी ओर से आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आप जानते ही हैं, करेंगे अगर रोज योग तो हमेशा रहेंगे निरोग। तो ये कीजिए योग और रहे निरोग। और इन्होंने ये लिखा है कि आज आपका ये जो कार्यक्रम है, एक ही कलाकार, ये हम सुन रहे हैं और ये हमें बेहद पसंद आ रहा है। और हमारी जो है शुभकामनाएं आपके इस कार्यक्रम के लिए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और मैसेज ले लेते हैं, ये आया हुआ है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर का, जालंधर पंजाब से। और इसके अलावा एक और संदेश आया है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता का, और बीकानेर से रानी और बिट्टू का। और इन्होंने लिखा है, अरुणेश जी सादर नमस्कार, शुभ दोपहर। आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम रहमान जी पर केंद्रित है, जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण है, गाने जानकारी और रोचक किस्से बेहद अच्छे लग रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसे ही आप हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे इस चैनल को सुनते रहिए और अपना फीडबैक हमें ipradiodaily@gmail.com पर देते रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रहमान साहब की कुछ और फिल्मों के बारे में। एक यश चोपड़ा साहब की मल्टी स्टारर फिल्म आई थी वक्त, जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में ही उन्होंने चिनॉय सेठ का आइकॉनिक और बेहद ही रसूखदार विलेन का किरदार निभाया था। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाएंगे। फिलहाल आपको एक और गाना सुनवाते हैं लता जी और प्रेमलता की आवाज़ में।

और इसी बीच एक और संदेश आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद, निगरत, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। और इन्होंने लिखा है कि आपके कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए बधाइयाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।

सच में हमारे आज के कलाकार रहमान साहब के किरदार में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। एक और अगर हम उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल ने फिर याद किया, और इस टाइटल ट्रैक में रहमान साहब का बेहतरीन और संजीदा अभिनय देखने को मिलता है। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म यानी दिल ने फिर याद किया, इसका टाइटल सॉन्ग सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी का संदेश आया है और इन्होंने लिखा है कि कलाकार में आज आप रहमान साहब के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो बेहद ही अच्छा लग रहा है और आप जो गीत सुना रहे हैं वो भी हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये संदेश आया है मोहम्मद इशफाक, खतीजा बेगम मोहम्मद इशफाक, अफरीन कौसर और अल्ताफ नीलोफर का। इन्होंने लिखा है कि आज के बारे में जो आप कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सुनकर बेहद मज़ा आ रहा है। आपकी प्रस्तुति का अंदाज बेहद ही शानदार और सटीक है। आपकी मधुर और मीठी आवाज़ दिल को छू जाती है। आप यूं ही खुश रहो और हंसते हंसाते रहो। अरे जी, आपने तो हमारी तारीफों के पुल बांध दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हंसी और हमारी खुशी तो आप जैसे श्रोताओं पर निर्भर करती है। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, सराहना करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने कार्यक्रमों के जरिए, गीत संगीत के जरिए अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें।

दोस्तों, रहमान साहब हिंदी सिनेमा के एक बेहद ही गरिमामयी, रोबीले और शानदार अभिनेता थे। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया। वे विशेष रूप से फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त साहब की टीम का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते थे। उनकी अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और रईसाना अंदाज के लिए मशहूर रहमान साहब पर कई सदाबहार गाने भी फिल्माए गए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक और गाना सुनवाते हैं प्यासा फिल्म से, जिसमें रहमान साहब ने एक अमीर प्रकाशक घोष बाबू का यादगार किरदार निभाया था। आप सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो दोस्त अरुणीश कुमार के साथ।

धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का मैसेज आया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हम आपके संदेश को शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है।

पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है कि आपने रहमान साहब के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनवाए जो कि हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक और फिल्म आई थी चौदहवीं का चांद, और इस फिल्म में भी रहमान साहब ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

सच में हमारे आज के कलाकार रहमान साहब अपने किरदारों में लाजवाब अभिनय किया करते थे। एक और संदेश आया है करनाल मॉडल टाउन से। सुधीर, नूतन, किरण, संदीप, जगमोहन प्रजापति और शशि बाला मीनाक्षी तिवारी का।

दोस्तों, रहमान साहब ने बड़ी बहन एक फिल्म आई थी 1949 में, इसमें भी उन्होंने बहुत ही शानदार किरदार निभाया था और ये उनके शुरुआती करियर की बेहद सफल और संगीत से भरपूर फिल्म थी। इसके अलावा दिल ने फरियाद किया 1966 में ये फिल्म आई थी, इसमें धर्मेंद्र और नूतन के साथ इस फिल्म में रहमान साहब का भी बहुत ही अच्छा सा रोल था। और आंधी 1975 में आई वो फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन थे। इस सियासी ड्रामा फिल्म में भी रहमान साहब ने बेहतरीन कार्य किया था। तो दोस्तों, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें आपको जो है अलविदा कहना होगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाज में।

दोस्तों समय के साथ चलना होता है, इसलिए हमें आप अनुमति दीजिए, फिर किसी न किसी कार्यक्रम में इसी चैनल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार का स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

0: बजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को मेरी यानी श्रुति बुरी की
1: और मेरी यानी वंदना जोरी की राधे राधे। श्रुति बहना,
0: हाँ हाँ,
1: याद है आपको आज का दिवस?
0: आज तो 21 जून है।
1: हाँ, और आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग शरीर के काजे कितेक लाभप्रद है, जे तो सभी जाने ही हैं।
0: हाँ बहन वंदना, तभी तो यह दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाएवे की मंजूरी फटाफट से मिल गई। मात्र 90 दिना में पूर्ण बहुमत के संग।
1: हाँ बहना, कहे में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे कम समय में या प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और हम तो यही कहेंगे कि भारत की या बहुमूल्य देन को लाभ सबन को भरपूर मिल जाए।
0: हाँ वंदना, आजकल सभी योग के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भए हैं। और या के अलावा वंदना, या ते वैश्विक समरसता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
1: जे बात आपने बिल्कुल सही कही है श्रुति बहना, क्योंकि योग को उद्देश्य बस शरीर ते ही नहीं जुड़ो, वरन मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हु जुड़ो है। और जब मन ते जुड़े रहेंगे, आध्यात्म ते जुड़े रहेंगे, तो सबन को संभाव ते ही तो देखेंगे, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के।
0: बिल्कुल वंदना, देखो योग को अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुबह सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन और आहार के नियम, इनके नियमित अभ्यास से शरीर के संग मनहु तनाव मुक्त है जावे है और स्वस्थ मन बने है। और जब मन स्वस्थ होएगा तभी तो हम भलाई कर पाएंगे औरन की।
1: बिल्कुल श्रुति बहना, हमारे ब्रज में कहमे है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसे उठेंगे विचार, और जैसे होंगे विचार वैसा ही बनेगा व्यवहार। और आचार विचार को शुद्धिकरण योग ते ही संभव है। तभी तो योग भारतीय दर्शन के षड दर्शन परंपरा को महत्वपूर्ण अंग है श्रुति बहना।
0: बिल्कुल, और ऐसा हूँ कछु तो ब्रजभाषा में हूँ कहो गया है कि पहलो सुख निरोगी काया, क्योंकि काया निरोगी होएगी तभी तो सुख को स्वाद चखेंगे। और ऐसा हूँ कह में है कि काया राखे धर्म, और अगर काया कष्ट में होएगी तो शीघ्रे धर्म करम, यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे।
1: और जायते योग के 8 नियम को अभ्यास अष्टांग योग में आवश्यक है श्रुति बहना। बहना, योग पतंजलि तक ही सीमित ना है, वरन याको वर्णन अलग अलग रूपन में अन्य ग्रंथन में हूँ मिले है। उपनिषद में योग को नाड़ी शोधन, प्राण नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति को साधन बतायो गयो है, तो वेदांत में ब्रह्म के संग आत्मा के विलय के रूप में बतायो है।
0: और वंदना, भगवत गीता में योग को कर्म, भक्ति, निष्काम कर्म, इन सिद्धांतन ते हु जोड़ो गयो है। चित्त, मन और बुद्धि की शुद्धता के माध्यम ते जीवात्मा ब्रह्म में लीन है सके है। संत, ऋषि और गृहस्थ के काजे निष्काम कर्म योग और भक्ति योग दोनों ही सहज साधना है।
1: हाँ बहना, और श्री कृष्ण अवतार को मुख्य उद्देश्य मानव जाति को कल्याण करना ही तो हतो। अपने इंद्रियों को वश में करके कैसे जीवन को सहज और सरल बनायो जाए सके, जे बिन की लीलान में झलक्यो हो और ब्रज की धरती पे जन्म लेके बिन्ने प्रेम को मार्ग प्रशस्त करियो, ब्रजवासियों को आनंदित करियो, आह्लादित करियो।

0: सुन रहे थे। और वंदना, यह भजन को सुन के ना एक अजीब सी थिरकन है रही है, जैसे कि मन स्वयं ब्रज की गलियन में विहार कर रहे होए। ब्रज वो भूमि है जहाँ यमुना की लहरन में आजहू राधा माधव की प्रेम कथाएं बहे हैं, जहाँ की मिट्टी को माथे ते लगाए हुए मात्र ते तीर्थ है जावे हैं।
1: बिल्कुल श्रुति बहना, और ब्रज की आत्मा है श्री राधा रानी, जिनके बिना ब्रज की कल्पना हु अधूरी है। कण कण में उनको वास है, हर कुंज में, हर घाट में, हर वट वृक्ष की लता पतान में, और हर ब्रजवासी के हृदय में। और याई लिए आज हम आपको उन दिव्य स्थलन को मानस विहार करवाए वे जा रहे हैं, जो राधा रमन की लीला ते सदा सदा के ताई अनश्वर है गए हैं।
0: वंदना बहन, सबसे पहले बात करें हैं रावल की। छोटो सो शांत सो गांव, जो मथुरा के पास ही बसो भयो है, और याय श्री राधा रानी को वास्तविक जन्म स्थान मानो जाए है। और वहाँ के बाद अगर हम वृषभानुपुर की बात करें, वहाँ पे राधा रानी ने अनेक बाल लीलाएं करी ही। हाँ। या को बरसाना धाम यही थे तो अमर है गयो।
1: और बहना, या वृषभानुपुर में कई मंदिर आमे है जहाँ राधा रानी ने अनेक लीलाएं करी। प्रेम मनोहार की स्मृति आज हूँ इन मंदिरन की दीवारन में बसी भई है। यहाँ की लठमार होली तो विश्व विख्यात है ही बहना, वो परंपरा जो राधा कृष्ण की प्रेम केली की याद दिलावे है।
0: बिल्कुल वंदना बहन, और इन्हीं परंपरान को जीवंत रखते भय और भक्त संप्रदाय ने कृष्ण राधा लीला स्थलीन को संरक्षण किया और इनको पुनरुद्धार किया। मंदिर जो इन लीलान के साक्षी हैं और बड़े प्राचीन हैं, प्रसिद्ध हैं, तो आज हम श्रोतान को इनके बारे में बताए हुए के काजे एक वार्ता लेके आए हैं। ब्रज भूमि में राधा जी ते जुड़े स्थल और मंदिर, वार्ताकार हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल।
2: श्रोता मित्रों, ब्रजभूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र ना है, बल्कि प्रेम भक्ति और माधुर्य की जीवंत धरती है। यही भूमि पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं संपन्न भई। ब्रज को कड़कड़ प्रत्येक वृक्ष, कुंड, सरोवर, वन और गिरिराज आजहू राधा श्याम के प्रेम को गुणगान करतो प्रतीत हुए है। जब ब्रज की धरती पे प्रभात को उजास फैले है, मंदिरन की घंटी की ध्वनि सुनाई देवे है, वृक्षन पे बैठे पक्षीन को कलरव सुनाई दे है, और भक्तन के मुखसों राधे राधे की पुकार वातावरण को भक्ति रसों भर दे है, तो ऐसो लगे है मानो संपूर्ण ब्रजभूमि आज हू राधा श्याम के प्रेम में सराबूर है। सबसे पहले हम चलेंगे रावल गांव की ओर। रावल गांव श्री राधा रानी की प्राचीन जन्म स्थली मानी जाए है। यही ब्रजवान बाबा और मैया कीर्तिदा के आंगन में प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा प्रकट भई। आज हू रावल में स्थित राधा रानी मंदिर भक्तन की अगाध श्रद्धा को केंद्र है। यहाँ पहुँच के ऐसा प्रतीत हुए है मानो आज हू कीर्तिदा मैया को आंगन राधा रानी की बाल लीलान की स्मृति सो महक रहे हुए। लाली के जन्म दिन पे आज हू पूरे ब्रज में बधाई गाई जाए है कि बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। रावल के बाद ब्रजवान बाबा को परिवार बरसाने आए के बस गयो। आज बरसानो पूरे विश्व में राधा रानी की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। चार पर्वतन सो घिरो बरसानो प्रेम और भक्ति की राजधानी कहो जाए है। दूर सो ही ब्रह्माचल पर्वत पे विराजमान श्री जी मंदिर के शिखर और लहराती ध्वजा भक्तन को अपनी ओर आकर्षित कर ले हैं। बरसाने में स्थित श्री जी मंदिर राधा रानी को मुख्य मंदिर है। मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ते प्रत्येक भक्त के मुख पे केवल एक ही नाम रहे है, राधे राधे। मंदिर में विराजमान लाडली जी के दर्शन करते ही मन प्रेम रस में डूब जाए है और हृदय सो स्वतः ही स्वर फूट पड़े हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली जी मंदिर के बाद बरसाने की सांकरी खोर को बहुत महत्व है। ब्रज की लोक मान्यता है कि यही प्रेम भरी नोक झोंक और हास परहास की अनेक लीलाएं संपन्न भई थी।

बरसाने में स्थित मानगढ़ू अपनो विशेष महत्व रखे है। ऐसो कहो जाए है कि जब राधा रानी मान करके रूठ जामे ही तो श्री कृष्ण उन्हें मनावे के काजे यही आयो करे है। मानगढ़ प्रेम में मान और मनुहार की मधुरता को प्रतीक है। प्रेम में रूठनो और फिर प्रेम पूर्वक मनानो ब्रज की माधुर की अद्भुत पहचान है। या के निकट ही मोरकुटी है, चारों ओर वृक्षन की हरियाली बरसात के दिनन में मोरन की मधुर पुकार वातावरण को रमणीय बना दे है। ब्रज की मान्यता है कि यही कृष्ण ने मोर बन के नृत्य करो हो और राधा रानी को प्रसन्न करो हो। आज हु जब मोर अपने पंख फैलाए के नृत्य करें तो ऐसो प्रतीत होए है मानो वही पुरानी लीला पुनः सजीव है उठी हुई और मुखसो निकल जाए है कि का नाम हुए ब्रज को बनाइयो मोर नाचू ताता थई। बरसाने की महिमा को वर्णन करते करते मन नाय भरे। यही बरसाने में स्थित गैवर वन हु राधा रानी को अत्यंत प्रिय स्थान मानो जाए है। गैवर वन में प्रवेश करते ही ऐसो अनुभव होए है मानो संसार को सारा कोलाहल पीछे छूट गयो हुए। घने कदम के तमाल के और पीपल के वृक्षन की शीतल छैया मंद मंद वहती सुगंधित व्यार पत्तीन की सरसराहट और पक्षीन को मधुर कलरव वातावरण को अलौकिक बनाए दे है। यहाँ पहुँच के मन अपने आप भजन में डूब जाए है। बरसाने में ही पीरी पोखर भी बहुत प्रसिद्ध है। मोए तो यहाँ जाए वो बहुत ही अच्छो लगे है। चारों ओर हरियाली सो घिरी या पावन पोखर के जल में जब आकाश और वृक्षन की छवि झलके है तो दृश्य बहुत ही मनोहारी है जाए है। ब्रज की मान्यता है कि विवाह के पश्चात राधा रानी ने अपने हाथन की हल्दी यहीं धोई हती। वाई सोया को नाम पीरी पोखर पड़ गयो। शाम के समय जब सूर्य अस्त होए है और अपनी सुनहरी किरण या जल पे बिखेरे तो ऐसो लगे है मानो सरोवर राधा रानी के मार्धुर सो आलोकित है उठो है। अब हम चलेंगे मुखराई गांव की ओर। मुखराई गांव राधा रानी की ननसार के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मुखरा देवी अर्थात राधा रानी की नानी को निवास मानो जाए है। ब्रज की लोक कथान में मुखरा देवी के स्नेह और लाड़ प्यार के बहुत से प्रसंग सुनवे को मिले हैं। संकेत ब्रज की अति पावन और प्रेममयी स्थली है। ब्रज की मान्यता है कि यही राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की मधुर लीला संपन्न भई। संकेत के पश्चात हम चलेंगे नंदगाम की ओर। नंदगाम मुख्य रूप सो तो श्री कृष्ण की बाल लीला सो जुड़ो है, परंतु राधा रानी के बिना नंदगाम की महिमा अधूरी है। नंदगाम की गलीन में आज वो राधे राधे की पुकार निरंतर सुनाई दे है। नंदगाम ते चल के हम पहुँचेंगे ब्रज के रसिक जनन के परम प्रिय तीर्थ राधा कुंड और श्याम कुंड। ब्रज में राधा कुंड को स्थान बहुत ऊंचो मानो गयो है। भक्त जन ऐसो माने हैं कि राधा कुंड स्वयं श्री राधा रानी के प्रेम को साकार स्वरूप है। देश विदेश से आए भक्त जन यहाँ स्नान परकम्मा और भजन कीर्तन करके अपने जीवन को धन्य माने हैं। राधा कुंड के पास ही स्थित है श्याम कुंड, जो राधा श्याम के दिव्य प्रेम की अमर स्मृति को सजोए बैठो है। अब हम चलेंगे कुसुम सरोवर की ओर। कुसुम सरोवर ब्रज के सबसे रमणीय और मनोहर स्थलन में से एक है। मान्यता है कि यही सखी राधा श्याम के सिंगार के काजे विविध रंगन के पुष्प चुनवे आयो करे ही। और अब हम पहुँच गए वृंदावन। वृंदावन को नाम सुनते ही मन प्रेम और भक्ति सो भर उठे है। वृंदावन तो राधा श्याम के प्रेम की राजधानी कहो जाए है और मुख सो बरवस ही निकर पड़े है वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, यहाँ की प्रत्येक गली प्रत्येक कुंज प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक रजकण राधा कृष्ण की लीला कथा सुना तो प्रतीत हुए है। सुबह सुबह जब मंदिर के कपाट खुले हैं, घंटान की धुनि सुनाई दे है, मृदंग और झांझ की ताल सुनाई दे है, संत जनन के भजन और भक्तन के समूह वातावरण को भक्तिमय बना दे हैं। वृंदावन में स्थित श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, श्री राधा मदन मोहन मंदिर और श्री राधा गोविंद देव मंदिर भक्तन की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं।
वृंदावन में

0: स्थित सेवा कुंज भी बहुत महत्व रखे है। ऐसो कहो जाए है कि यहाँ आज हु रात्रि बेला में श्यामा श्याम की दिव्य लीलाएं संपन्न हुए हैं। यही प्रकार सो निधिवन भी ब्रज के सबसे रहस्यमयी श्रद्धामयी स्थानन में सो एक मानो जाए है। सांझ ढलते ही यहाँ का वातावरण अद्भुत शांति और रहस्य सो भर उठे है। बरसाने की कीर्ति मंदिर हु बहुत मनोहारी है। यहाँ माता कीर्ति की गोदी में विराजमान बालिका राधिका को रूप वात्सल रस की अनुपम अनुभूति करावे है। मंदिर में पहुँच के ऐसो लगे है मानो मैया कीर्ति अपनी लाडली को प्रेम सो निहार रही हुए। प्यारे प्यारे श्रोता मित्रों, अब तक हमने श्री राधा रानी से जुड़े अनेक प्रमुख स्थलन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब मैं अंत में आप सबन को ब्रज भूमि में एक ऐसे शांत पावन और रहस्यमय स्थल को परिचय देना चाहूं, जो संत जनन की साधना भक्ति की श्रद्धा सो जुड़ो स्थान मानो जाए है। यह पावन स्थली को नाम है राधा बावरी। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में स्थित ये राधा बावरी अपने भीतर श्रद्धा साधना और आध्यात्मिक शांति को अद्भुत इतिहास समेटे बैठी है। जब कोई भक्त राधा बावरी की ओर बढ़े तो चारों ओर फैली नीरवता, वृक्षन की शीतल छैया, मंद मंद बहती बयार और पक्षिन को मधुर कलरव मन को भीतर तक स्पर्श कर जाए है। ब्रज के संत महात्मा और रसिक भक्तन में या स्थल के प्रति विशेष श्रद्धा पाई जाए है। जनश्रुति के अनुसार अनेक साधु संतन ने यही एकांत में बैठ के हरि नाम संकीर्तन भजन ध्यान और साधना करी हती। प्रातः काल की बेला में यहाँ ऐसी शांति व्याप्त हुए है कि मन स्वतः ही संसार के कोलाहल से दूर हटके भगवान के स्मरण में लीन है जाए है। ब्रज के बड़े बूढ़े इनको ऐसो कहवो है कि ये भूमि श्री राधा रानी की कृपा से अभिषिक्त है। राधा बावरी केवल जल को स्रोत ना है बल्कि श्रद्धा साधना और आत्मिक शांति को प्रतीक है। ऐसो लगे है मानो ब्रज की पावन धारा कह रही हो कि राधा नाम रसधार है, राधा कृपा अपार, जाके हृदय बस राधिका ताको होय उद्धार। ऐसे वातावरण में भक्तन को मन बिन्ने सो भर उठे है और भक्ति भाव उमड़ पड़े है तो मन कह उठे है कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण। श्रोता मित्रों, ब्रजभूमि में ऐसे पावन स्थल हमें केवल इतिहास ही ना बतावे बल्कि प्रेम भक्ति सेवा समर्पण और सरलता को ही संदेश दे हैं। श्री राधा रानी केवल एक पूजनीय देवी ही ना है अपितु प्रेम की पराकाष्ठा, करुणा की मूर्ति और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। आओ हम सब मिलके राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे ब्रजेश्वरी, हम सबन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, हमारे मन में प्रेम करुणा सद्भाव और भक्ति को दीपक सदा प्रज्वलित रखो, हमें ब्रज भाषा ब्रज संस्कृति और राधा नाम की सेवा करवे की शक्ति प्रदान करो। और मैं तो यही कहूँ हूँ कि मोहे तो भरो सो है तेरो ही किशोरी राधे।
1: तो प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप वार्ता सुन रहे हैं ब्रज भूमि में राधा जी से जुड़े स्थल और मंदिर, या की वार्ताकार ही डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल। तो वंदना, देखो ब्रज को जो हृदय है ना, वो वृंदावन मान्यो जाए है, प्रेम की नगरी है वृंदावन। और यहाँ जो प्रेम की नगरी वृंदावन है, वहाँ पे हम अपने श्रोतान को ले चले हैं मानस विहार कराईवे के ताई। तो यहाँ राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा गोविंद जी को हु मंदिर है। ये सब मंदिर भक्तन के ताई साक्षात स्वर्ग हैं। पर वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जो मोए सब ते ज्यादा रोमांचित करे है, और वो है इमली तला।
2: अच्छा,
1: ये वो प्राचीन इमली का वृक्ष है जाकी छा में स्वयं श्री कृष्ण बैठ के राधा रानी की प्रतीक्षा कियो करते, और यह वृक्ष की आयु हजारों वर्ष तेउ ज्यादा की बताई गई है। आज भी भक्त वा अनुभूति को महसूस करे हैं जो शब्दन में बताई ना जा सके है।
2: और श्रुति बहना, आपने निधिवन की बात करी है ना, तो जे वो रहस्यमय वन है जहाँ रात ढलते ही सभी द्वार बंद है जाएं, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि आज हु

0: रात्रि को राधा माधव यहाँ रासलीला रचे हैं। राधा रानी को आज हो हर रात्रि श्रृंगार थाली सजाई जाए, पान मिठाई वस्त्र संपूर्ण 16 श्रृंगार, और सुबह जब कपाट खुले हैं ना तो थाली अस्त व्यस्त मिले। ये कोई किंवदंती ना है, यहाँ के पुजारी और स्थानीय जन आज हो याए आखिन देखो माने हैं।
1: तो श्रोताओं, राधा रानी प्राकट्य मंदिर रावल जहाँ किशोरी जी ने प्राकट्य लियो, मान मंदिर बरसाना जहाँ प्रेम ने रूठनो मनानो सीखो, इमली तला वृंदावन जहाँ एक वृक्ष प्रतीक्षा को प्रतीक बन गयो, राधा कुंड गोवर्धन निधि वन सेवा कुंज, ये सब देख के लगे है कि ब्रज कोई भूगोल नए है, ये एक भाव है, एक आत्मा है।
0: हाँ श्रुति बहना, ये वो धरती है जहाँ प्रेम अपने सबते शुद्ध सबते निस्वार्थ और सबते अलौकिक रूप में प्रकट भयो। श्री जी जो साक्षात अहलादिनी शक्ति हैं, वो आज हु यहाँ विचरे हैं। श्रोताओ, अगर कबहू ब्रज जाओ तो एक भक्त बन के जइयो, यमुना की रेत में बैठ आंखें मूंद के बस मन ते एक बार पुकारियो राधे, विश्वास मानियो वो जरूर सुनेंगी,
1: क्योंकि ब्रज में जो आवे है वो कबहू खाली नाए लौटे है।
0: तभी तो वहाँ की गलियाँ प्यारी लागे हैं।

0: समूह स्वरण में अभी आप जे भक्ति गीत सुन रहे हैं और यह गीत के संगे आज का ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
1: मोय यानी वंदना जौहरी को
0: और मोय श्रुतिपुरी को देव अनुमति नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं
1: आपकी दोस्त प्रिशा अग्रवाल।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जिसका नाम है
2: रेडियो प्रिंस।
1: पता है विराट, भारत की भूमि ऋषि मुनि देवों की है।
0: हाँ प्रिशा, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध है। सभी सुखी रहे की भावना को लेकर ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को सुखमय और स्वास्थ्य बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख प्रयास है योग। और तुम्हें पता है, योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लेना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाना चाहिए क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।
1: विराट, आपने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या आप और जानकारी देना चाहते हो योग के बारे में?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ।
1: योग का मतलब है जोड़ना, मतलब किसी अच्छे काम से अपने आप को जोड़ना। अपनी हेल्थ के लिए अपने शरीर और मन से किया गया काम होता है योग।
0: हाँ, इसलिए तो कहते हैं सुबह सुबह जो कसरत करता, सुबह सुबह जो कसरत करता, जीवन में वो आगे बढ़ता। विटामिन डी की कमी पूरी होती, जिस तन सूर्य की किरणें लगती। तुम्हें मालूम है प्रशा कि आजकल मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने हेतु योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: हाँ विराट, मैं अपने पापा के साथ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती हूँ योग करने। मैंने देखा है पार्क, बगीचों, घर की

0: छत पर लोग योग करते हैं। लोग योग संस्थाओं टीवी मोबाइल से सीख रहे हैं।
1: हाँ प्रशांत, तुमने बिल्कुल सही बोला। विद्यालयों में बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है एवं योग कराया जा रहा है। योग स्वास्थ्य की कुंजी तो है ही, और यह भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। इसलिए तो कहते हैं मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, दिन भर रहता शरीर एक्टिव। योग हमें सुंदर मार्ग दिखाता, रोगों से मिलता छुटकारा। दोस्तों, हमने योग दिवस पर तो बहुत जानकारी दे दी। चलो दोस्तों, आज हम एक मजेदार क्विज खेलते हैं जो योग पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने योग ज्ञान की परीक्षा देने के लिए?
2: हाँ।
1: तो चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पुराना योग कौन सा है?
0: मैं बताऊं।
3: मुझे पता है।
1: हाँ, प्रशा बताओ।
0: प्राणायाम।
1: बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव को किस आसन में बैठना प्रिय है?
3: मुझे पता है विराट।
1: हाँ, बताओ।
3: शिव जी आलती पालती कर बैठते हैं।
1: अरे, आलती पालती मारकर तो बैठते ही हैं, लेकिन उस आसन का नाम क्या है?
3: अरे हाँ, याद आया, पद्मासन।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने, स्तुति। तीसरा प्रश्न, योग के कितने मुख्य आसन होते हैं?
0: मुझे पता है विराट।
1: हाँ, बताओ।
0: योग के प्रमुख 84 आसन होते हैं।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अच्छा स्तुति, मैंने तो अब इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, क्या तुम कुछ प्रश्न या फिर पहेलियाँ लाई हो योग के ऊपर?
3: हाँ, लाई हूँ।
1: तो जल्दी से पूछो।
3: हम इतनी देर से योग की बात कर रहे हैं कि योग क्या है?
1: हाँ स्तुति, मेरे को पता है, हमारे शरीर मन और आत्मा को स्वस्थ बनाने में योग हमारी बहुत मदद करता है।
3: अगला सवाल, योग करने से क्या हासिल होता है?
0: मुझे पता है।
1: आर्ची, मैं देख रहा हूँ तुमने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है?
0: हाँ, मुझे पता है विराट।
1: तो बताओ।
0: योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरती है, तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने आर्ची।
3: अगला सवाल, योग दिवस कब मनाया जाता है?
0: मुझे पता।
1: हाँ, सोमचंद बताओ।
4: 21 जून।
1: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया सोमचंद। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक एक आसन का नाम पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं बताने के लिए?
2: हाँ, तैयार है।
1: तो प्रिशा बताओ किसी एक आसन का नाम।
0: सूर्य नमस्कार।
1: स्तुति तुम?
3: ताड़ासन।
1: और प्रिशा कश्यप तुम?
5: प्राणायाम।
1: और आर्षी तुम किसी एक आसन का नाम बताओ।
6: त्रिकोण आसन।
1: और इतिका तुम?
7: पद्मासन।
1: अरे वाह, सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
3: अगला सवाल, योग करने से क्या लाभ है?
1: मैं बताऊं क्या स्तुति?
3: हाँ, बताओ विराट।
1: योग करने से हमारा शरीर मजबूत और लचीला बनता है, तनाव कम होता है और हमें शांति भी मिलती है, हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद मिलती है, शरीर अपना रोग मुक्त करे, कपाल भाती आप रोज करें, सभी आसन योग के असरदायक, अनुलोम विलोम अति लाभदायक।
0: ऐसे दोस्तों कहते हैं, योग करे हम योग करे, दूर सभी हम रोग करे, वरदान मिला जो हमको हम उस का उपयोग करे, तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है, सदा सुखी वह रहता है जो इसको करता है।

0: हमारे स्टूडियो में एक साथी आए, चलिए पूछते हैं उनका नाम।
1: मेरा नाम इतिका है।
0: अब क्या सुनाने वाला है?
1: आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ।
2: तो चलिए सुनते हैं।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
0: यह तो बहुत आनंद आया सुनने में।
1: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, मैं आज कुछ मजेदार पहेलियां लाया हूँ। क्या तुम चाहते हो कि वो पहेलियां मैं तुमसे पूछूं?
3: हाँ, हम चाहते हैं।
2: तो पहली पहेली, बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती हूँ, बताओ बताओ।
1: मैं बताऊँ? हाँ, इसका उत्तर पुस्तक है।
2: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। दूसरी पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाएं, भारत के

0: इन तरफ दिखाएं। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
1: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका उत्तर पता है,
0: तो बताओ।
1: सागर। अरे
0: अरे वाह, तुमने भी एकदम सही उत्तर दिया। अगली पहेली। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार।
1: विराट, क्या मैं
0: हाँ
1: बताऊँ?
0: आरशी बताओ।
1: इसका उत्तर चार पाई है।
0: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आरशी। अगली पहेली। नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी, नील गगन है इसको भाए, चलना क्या उड़ना भी आए। तुती, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
1: हाँ विराट, मुझे इसका भी उत्तर पता है,
0: बताओ फिर।
1: तोता।
0: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगली पहेली। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? प्रिशा, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
1: हाँ
0: हाँ हाँ बताओ। अरे
1: सांप।
0: सांप कैसे हो सकता है इसका उत्तर? सांप नहीं होगा इसका उत्तर। सोम, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
1: सपना।
0: अरे वाह सोम, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं आप सबसे आखिरी पहेली पूछता हूँ। देखते हैं अब इसका उत्तर कौन देता है। वह क्या है जिसका नाम ले तो टूट जाती है?
1: क्या मैं बताऊँ?
0: हाँ हाँ बताओ।
1: खामोशी।
0: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: नमस्कार, मेरा नाम मन्ना शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय पे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हूँ। कुछ पंक्तियों में बंधा हुआ है जीवन का यह वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। काट कर वृक्षों को देखो, बना दिया सब रेगिस्तान, करके प्रकृति का शोषण, धरती कर दी है सुनसान। सृष्टि अंत को रोकने का कोई नहीं है निवारण, क्षण क्षण देखो नष्ट हो रहे प्रकृति और पर्यावरण। जब धूप से बदन तपा तो याद आए छायेदार वृक्ष, जब धुएं से दम घुटा तो याद आए हरे वृक्ष, जब भूख से पेट सूखा तो याद आए फलदार वृक्ष। जब ये सब याद आया है तो हे मानव, तू क्यों पछताया है? तूने ही तो अपने हाथों से ये सब विनाश फैलाया है। अब भी समय है, जाग जाओ, पेड़ न काटो, पेड़ उगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद।
1: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ, जरूर सुनाओ।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं?
2: मेरे को तो नहीं पता प्रिशा, तुम ही बता दो।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि मच्छर उनके अलग अलग खून के फ्लेवर्स एंजॉय कर पाए।
2: प्रिशा, मैं तो तुम्हारे चुटकुले सुन के लोटपोट हो गया।
3: अब मैं क्या एक चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ इतिका सुनाओ।
3: टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा।
4: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
5: हाँ आशी सुनाओ।
4: टीचर, गोलू से, पांच में से पांच घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास पांच भटूरे हैं और पांच भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले।
2: अरे वाह आरशी, तुमने तो बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। तुमने तो आरशी जैसे ही छोले भटूरों की बात करी, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया।
6: मेरा नाम अरहम है। आज मैं अपने पापा के लिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। पापा मेरे सबसे प्यारे, लगते मुझको सबसे न्यारे, जब मैं गिरता हाथ बढ़ाते, हिम्मत देकर मुझे उठाते, खुद मेहनत दिन रात है करते, मेरे सारे सपने हैं भरते, कंधों पर जब मुझे बिठाते, दुनिया की सैर भी कराते, मेरी खुशियों का है खजाना, पापा जैसा नहीं ठिकाना, रब से बस यही दुआ है, खुश रहें पापा सदा सदा। फादर्स डे पर कहता हूँ, दिल से आपसे प्यार मैं करता हूँ, लव यू पापा।
7: जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, और आज मैं अपने जीवन के सबसे खास इंसान अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि माँ ममता की छांव होती है, तो पापा उस मजबूत पेड़ की तरह होते हैं जो हर धूप और हर तूफान से हमें बचाते हैं। आज सुबह जब मैंने पापा को फादर्स डे विश किया तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिन बन गया। फिर हमने साथ बैठकर बातें की, पुरानी यादों को ताजा किया और कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि सबसे कीमती चीज जो मैंने पापा को दी वो था अपना समय। मैं अपने पापा के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। मेरी हर खुशी में आपका ही नाम है, मेरे हर सपने में आप ही मुकाम है, मैं जो आज मुस्कुरा कर दुनिया से मिलती हूँ, उस मुस्कान के पीछे मेरे पापा का प्यार तमाम है। खुद धूप में रहकर छांव हमें दे जाते हैं, अपनी खुशियाँ भूलकर हमें हंसा जाते हैं। पिता का प्यार शब्दों में कहाँ बयां होता है, वो तो खामोशी से पूरी दुनिया लुटा जाते हैं। पापा, आपने मुझे चलना सिखाया, सही और गलत में फर्क समझाया, गिरने पर संभलना सिखाया और सपने देखने भी सिखाए। जब भी मैं घबराती हूँ, आपकी एक बात मुझे हिम्मत दे देती है, कोशिश करो।

0: पिता, तुम जरूर करोगी। आज फादर्स डे के इस खास मौके पर मैं दिल से बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू पापा मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, मेरा हर सपने को अपना सपना बनाने के लिए और हर हाल में मेरा साथ देने के लिए। आप मेरे पहले शिक्षक हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अंत में बस दो पंक्तियाँ, नसीब वालों को मिलता है आपके जैसा सहारा, मेरे पापा हैं मेरी दुनिया, मेरा चांद मेरा सितारा। हैप्पी फादर्स डे पापा। और दोस्तों, अगर आपके पापा आपके पास हैं तो आज उन्हें गले लगाइए और दिल से कहिए, पापा आप मेरी दुनिया हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और हम मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक गाना साथ में गा लें।
1: हाँ ठीक है,
0: स्टार्ट करते हैं।

0: अरे विराट, बातें करते करते हमें तो पता ही नहीं चला हमारे जाने का समय हो गया।
1: हाँ प्रशा, अब वक्त हो चुका है हमारे जाने का और किसी और के आने का। दोस्तों, मैं और प्रशा लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए
2: बाय बाय।

0: Into the Li Guangpu Dientai. Xuan Zai Woman Bo Song Training to Guangpu Dientai Suo Tian Bo Chu the In Yu Chie Mu Spotlight the Chi Xuan Bu Fen. Ting, Shou Ting.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: Har saal ki tarah, is varsh bhi 21 June ko Antarashtriya Yog Divas manaya jayega. Is saal, Vishv 12va Antarashtriya Yog Divas mana raha hai. Aakhir kya hai yog? Ye aisi prachin bharatiya vidya hai, jisne puri dunya ko ye sikhaya hai ki saanson par niyantran ke madhyam se hum apne vichar aur jeevan ko kis prakar santulit kar sakte hain. विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा पर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
4: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी इनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
3: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है, वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
4: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थाने हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अपन गए थे बेंगलोर में, तो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय में, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो, 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास

0: करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी यह सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया। लेकिन इस साल वहां की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहां पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहां पर चुन के दिए, और वो वहां के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहां पर सीखें। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहां के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था, जहां पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस, बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया। हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहां थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड की अच्छी जगह है कि वहां बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहां पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहां के कारपोरेशन और वहां के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई, हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि सीएसआर फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका, कारपोरेशन, नगर पंचायत है, इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे,

0: योग थार के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,46,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग पैकेज। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।

0: फेंसिंग में बहुत कुछ हो रहा है और फिडे चैंपियनशिप भी है, तो साथ साथ बहुत सारी इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन
1: अतुल, आज आप भूल रहे हैं कि आज 21 जून है और आज की जो सबसे बड़ी और खास खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज देश और दुनिया में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष का आयोजन योग से स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ सहित देश के विभिन्न राज्यों में लाखों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भी योग कार्यक्रम में शामिल होकर नियमित योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया और लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। तो अतुल, इस मौके पर खेल और युवा मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: जी, योग हमारा संस्कार है, योग हमारा स्वभाव भी है। जब दुनिया शांति की शोध में थी तब भारत ने भगवान बुद्ध दिया। जब दुनिया अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए प्रयास कर रही थी तब हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया को योग दिया। योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े, योग को दिनचर्या का एक भाग बनाए, हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तो अतुल, ये थे मानसुख मांडविया और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद से योग का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अब ये केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि अब ये वैश्विक खेल मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि अहमदाबाद के ईके एरिना में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 5 दिन तक चली इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया और मेजबान भारत ने प्रतियोगिता में 122 सदस्यीय दल उतारा था। कुल 114 पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया जिसमें रिकॉर्ड 102 स्वर्ण पदक शामिल रहे।
0: जी हाँ, ये तो अचीवमेंट की बात करी आपने, योग, और योग बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाता हुआ। और बात करें रेणु और भी खेलों की, तो फीफा इस समय चल रहा है महाकुंभ, आइए जान लेते हैं उस पे क्या ताजा जानकारी है।

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जहां मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है, वहीं विश्व कप के ग्रुप चरण में शनिवार को खेले गए मुकाबलों में नीदरलैंड्स, जर्मनी और जापान ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जबकि इक्वाडोर को कुरासाओ के खिलाफ अप्रत्याशित झटका लगा। सबसे पहले ग्रुप एफ के मुकाबले की बात करते हैं। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। मैच के शुरुआती मिनटों से ही डच टीम हावी रही। ब्रायन ब्रॉबरी ने 2 दागे, जबकि कोडी गाकपो ने भी 2 गेंद को जाल में पहुंचाया। अंतिम क्षणों में क्रिसेंसियो समरविल ने 5वां गोल किया। स्वीडन के लिए केवल एंथनी एलंगा ही गोल कर सके। इस शानदार जीत के साथ नीदरलैंड्स ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ग्रुप ई की ओर रुख करें तो वहां जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। आइवरी कोस्ट ने फ्रैंक केसी के गोल से बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में जर्मनी ने शानदार वापसी की। डेनिस उड़ाव ने 68वें मिनट में बराबरी का गोल किया और फिर इंजरी टाइम में विजयी गोल भी दाग दिया। इस जीत के साथ जर्मनी ने नॉकआउट दौर में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है और ग्रुप ई में शीर्ष पर बना हुआ है। दिन के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर को कुरासाओ के खिलाफ 0-0 की निराशाजनक बराबरी से संतोष करना पड़ा। कुरासाओ के गोलकीपर एलॉय रूम मैच के सबसे बड़े नायक रहे। उन्होंने रिकॉर्ड 15 बचाव किए और इक्वाडोर के कई सुनहरे मौके नाकाम कर दिए। विश्व कप इतिहास में यह कुरासाओ का पहला अंक है और टीम के लिए यह परिणाम किसी जीत से कम नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर इक्वाडोर के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। ग्रुप एफ के एक अन्य

0: मुकाबले में जापान ने ट्यूनीशिया को एक तरफा मुकाबले में 4-0 गोल से हरा दिया। जापान की ओर से दाइची कामादा ने चौथे मिनट में गोल दागकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद आया से उएदा ने 2 गोल किए जबकि जुन्या इतो ने भी 1 गोल दागा। जापान ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और ट्यूनीशिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ ही जापान 4 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बात करें जो आज मुकाबले खेले जाएंगे उनकी, तो ग्रुप एच में स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। स्पेन ने पहले मैच में केप वर्डे के खिलाफ ड्रॉ खेला था जबकि सऊदी अरब ने उरुग्वे को बराबरी पर रोका था। ऐसे में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी। स्पेन के पास तकनीकी बढ़त है लेकिन सऊदी अरब ने अनुशासित खेल से पहले ही सबको प्रभावित किया है। ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मैच ड्रॉ खेले थे और जीत उन्हें नॉकआउट की दिशा में बड़ा फायदा दे सकती है। बेल्जियम अनुभव के दम पर मजबूत दिखता है लेकिन ईरान की संगठित रक्षा पंक्ति चुनौती पेश कर सकती है। ग्रुप एच के एक दूसरे मुकाबले में उरुग्वे का सामना केप वर्डे से होगा। उरुग्वे को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है लेकिन केप वर्डे ने स्पेन को रोककर अपनी क्षमता दिखा दी है। और ग्रुप जी की बात करें तो न्यूजीलैंड और मिस्र के बीच भी एक मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉकआउट की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी होगी। मिस्र के अनुभव और न्यूजीलैंड की जुझारू शैली के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकती है। तो फीफा 2026 की खबरों के लिए बने रहिए खेल खिलाड़ी कार्यक्रम पर, जहां पर लेकर आते हैं हम रोजाना अपडेट। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
1: अतुल, ये तो आपने बात की फीफा फीवर की, लेकिन क्रिकेट का फीवर तो इंडिया में कभी उतर ही नहीं सकता। और कल इंडिया अफगानिस्तान का भी मैच हुआ है, उधर विमेंस T20 और न जाने क्या क्या क्रिकेट में चल रहा है, तो जरा क्रिकेट की भी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए यहाँ पर।
2: जी हाँ, आज एक अहम मुकाबला होना है भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच में। और भी खबरें हैं तो आइए जान लेते हैं इस पर।
0: और क्रिकेट की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले की, जहां ग्रुप ए में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। जी हां, विमेंस T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल की दौड़ को देखते हुए यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर शानदार फॉर्म में है, जबकि गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम की उम्मीदें कप्तान लॉरा वोलवार्ड और अनुभवी ऑलराउंडर मारिजान कैप पर टिकी होंगी। दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती बनाए रखने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। भारतीय टीम संतुलन और हालिया प्रदर्शन के आधार पर थोड़ी मजबूत नजर आती है लेकिन दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। वहीं बात करें टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों के नतीजों पर, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 98 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 219 रन बनाए। बेथ मूनी ने 74 और एशले गार्डनर ने 58 रन की शानदार पारियां खेली। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम महज 121 रन पर सिमट गई। बाबेट डी लीडे ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाया लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकी। एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को मजबूत किया। बांग्लादेश की गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और बल्लेबाजों ने दबाव के क्षणों में बेहतर खेल दिखाया। पाकिस्तान की टीम मैच में अहम मौकों को भुनाने में असफल रही। वहीं ग्रुप बी में मेजबान इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 38 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सोफिया डंकली ने 57 रन की शानदार पारी खेली जबकि फ्रेया कैंप और डेनी गिब्सन ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन जुटाए। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 162 रन तक ही पहुंच सकी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं इंडिया और अफगानिस्तान के पुरुष टीम की बात करें, जहां पे कल तीसरा और अंतिम मैच खेला गया, वहां भारतीय टीम ने चेपॉक में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 44.2 ओवर में 218 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल के शतक और रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत आसानी से मैच जीता। भारत ने 28.4 ओवर में

0: एक विकेट पर 224 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद पर नाबाद 110 रन बनाए। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 44.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 218 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की ओर से कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने शतक लगाया, ये उनका पहला वनडे शतक है। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट चटकाए। इसके जवाब में भारत ने अच्छी शुरुआत की। रोहित शर्मा 69 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुए। नबी ने उन्हें पेवेलियन भेजा। यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद में नाबाद 110 रन बनाए। उन्होंने 29वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। शेष अय्यर ने भी 19 गेंदों पर 20 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए नबी ने 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज रहे, जिन्होंने इस सीरीज में 238 रन बनाए। जी हाँ, ये तो बात हुई कल खेले गए मैच की, और आज भी कुछ ताजा जानकारी है हमारे पास। अगर बात करें विमेंस T20 वर्ल्ड कप की रेणु, तो वहां पे एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच में। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 98 रन बनाए थे, जिसके जवाब में 9.2 ओवर के खेल तक वेस्टइंडीज ने 55 रन बनाए हैं 3 विकेट खोकर, यानी कि 44 गेंदों में 64 रन बनाने हैं। और बात करें अगर एक और अन्य अहम मुकाबले की, जहां पे श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच में ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला जा रहा है। इंडिया ए ने जहां 377 रन बनाए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर, मुख्य आकर्षण रहा वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी, जिन्होंने 29 गेंदों पर 94 रन बनाए। और ताजा स्कोर मिलने तक जानकारी तक श्रीलंका ए ने 41.3 ओवर में 284 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि भारत की झोली में जाता हुआ दिख रहा है फाइनल मैच। और इसके अलावा एक अहम खबर और है कि भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है वनडे टीम की, जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर रहेगी। अगर इंग्लैंड दौरे की बात करें तो शुभमन गिल कप्तान होंगे, और जबकि केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में होंगे, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन होंगे टीम के। टीम 3 मैच खेलेगी 14 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को। और अगर आयरलैंड दौरे की बात करें, जहां पे T20 मैच खेले जाएंगे, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम वहां पर मैच खेलेगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी थी अतुल। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ एनुअल अवार्ड्स भी अभी घोषित किए हैं और ये वितरित हुए हैं, तो इनके बारे में भी कुछ जानकारी है हमारे पास। तो हमारे जो साथी हैं शाहिद आजमी जी, वो मौके पर पहुंचे और काफी ताजा जानकारी वहां से लेकर आए हैं। कई हस्तियों से, विशेष हस्तियों से बात भी उन्होंने की है, तो आइए जानते हैं।
2: ट्रैक से लेकर थ्रो तक, स्प्रिंट से लेकर स्टेमिना तक, भारतीय एथलेटिक्स ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाने और खेल के नायकों को सम्मान देने के लिए नई दिल्ली में पहली बार इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड का आयोजन किया गया। आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को।
3: जब किसी को सम्मान मिलता है और सम्मान उसका हौसला बढ़ाता है, उसको प्रेरणा देता है, दो लोगों के लिए इंस्पायर मिलती है, जिसको सम्मानित करा गया उसको और अच्छा परफॉर्मेंस करने की प्रेरणा मिलती है, उसको देखने वाले, जैसा यहाँ जब एक हमारी एथलीट का सम्मान करा गया तो बोल रही थी कि मुझे, मैं ऐसी एथलीट कैसे बनूं, मेरा नाम कैसे आया। मैं ये सोचती थी, ऐसा सोचना उसको तब ऐसा सोच बनी जब उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए देखा। यहाँ जिस एथलीट का सम्मान करा गया है, इस एथलीट को देख के कई जूनियर एथलीट को प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। मैंने देखा, अभी नेशनल चैंपियनशिप आपकी चल रही थी, उसमें 3-4 खिलाड़ियों ने हमारा ही नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करा। हर बार ये जज्बे के साथ हमारे एथलीट खेल के मैदान में उतरे, हमें पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, ओलंपिक रिकॉर्ड के बराबर हमें हमारे एथलीट को पहुंचाना है और एथलीट को ये जज्बा रखना है। यहाँ हमारे शाहनवाज को आप मुझे इंडिविजुअल बता रहे थे कि मुझे 8.5 मिनट्स का रिकॉर्ड करना है, पर जब सार्वजनिक उसको कहा तो खिसकाए शाहनवाज।

0: Na msikilizaji, natumai umejiburudisha ama umefurahia nyimbo za Kihindi. Na kwa sasa tunaenda kusikiliza Spotlight ambayo tutapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na hebu tusikie, kumbuka kwamba hii ni Spotlight ambayo ni kipindi ambacho kinajadili ama inatumika kujadili mambo ambayo yanakumba India nje na nje ya nchi na pia ndani ya nchi. Hebu tusikize ni nini kilichojadiliwa siku ya leo.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
4: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
3: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
4: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमें रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अपन गए थे बेंगलोर में, तो हम आयुष मंत्रालय भी हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी यह सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
3: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
4: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को

0: जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया। लेकिन ये साल वहां की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहां पर एक हिंदुत्ववादी विचारसरणी वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहां पर चुन के दिए, और वो वहां के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहां पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहां के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था, जहां पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस, बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया। हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहां थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड की अच्छी जगह है कि वहां बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहां पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहां के कारपोरेशन और वहां के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई, हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका, कारपोरेशन, नगर पंचायत है, इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं। लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,46,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं। इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के, और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। आप बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, हम बुजुर्गों की भी है। नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग पैकेज। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है। तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होंगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight. Na msikilizaji, huo umekuwa spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na kama leo ni siku, ujuavyo ni siku ya yoga duniani, hayo ndiyo wamejadili siku ya leo. Na kwa leo msikilizaji, hatuna maoni, ila tutaendelea na taarifa chache, kisha baadaye tusikize nyimbo za

0: आतम सतौड़, जीतू सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की भी फरमाइश आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है राहुल नगर अमरावती से। इसको भेजने वाले हैं सिद्धार्थ हिरामन और उनका समस्त परिवार।
0: कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से फरमाइश आई है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और उनके परिवार के बाकी लोगों की।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से फरमाइश आई है नासिर शेख, नाजियाना सिर, साजिद और शाहिद की।
1: गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश मिली है जुनेद और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: एक और फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जसपुर उत्तराखंड से, उसको भेजने वाले रियासत हुसैन, नाजमा बेगम और उनका समस्त परिवार।
0: कौशिंदर खदाना को ही सुनना चाहते हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेगा, साक्षी और उनके परिवार के बाकी।
1: कौशिंदर कुंजागर के लिए और फरमाइश मिली है गांव खोकर वाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: इसी क्रम में एक और फरमाइश आई है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम ममना जिला हमीरपुर से, इसको भेजने वाले रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना और उनका समस्त परिवार।
0: गांव डंडी तहसील बद्रवा जिला डोडा जम्मू कश्मीर से हमारे पास फरमाइश आई है पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, ओम राज, मोतीलाल और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार शाहू, चित्ररेखा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, हिना, सकीला और उनके परिवार के सदस्यों की भी फरमाइश हम तक आई है।
1: कौशिंदर खदाना और साथियों को ही सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कौशिंदर खदाना और उनके साथियों से ये रागनी और किस्सा रहेगा नल दमयंती का।

0: तो सुनील भाई, अभी कौशिंदर खदाना और साथियों को हमने सुना, और अब अगले जो कलाकार हैं हमारे योगेश कुमार, और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, वो बहुत सारी फरमाइश है हमारे पास।
1: ये पहली फरमाइश हमें मिली है मुकेश बत्ता नीलम बत्ता की, कनेरा मोहला पटियाला से।
0: और वहीं अगली फरमाइश जैन मंदिर वाली गली कुरावली से फरमाइश आई राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: हेमंत भाई, इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी से, इसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अनु नारंग और उनका समस्त परिवार।
0: वहीं भोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश आई विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है अम्बेडकर चौक से, और इसको भेजने वाले उत्तम जमदाड़े और स्वराज और उनका समस्त परिवार।
0: गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से फरमाइश आई है विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: योगेश कुमार और साथियों को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ हादसा नंबर 2, इससे भाई भेजने वाले कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और पायल शाहू।
0: अगली फरमाइश ब्रिज बिहार कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से आई करमबीर सिंह डिलोट की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जटवाड़िया गाजियाबाद से सीसपाल अकेला।
0: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के सदस्य।
1: और इसी क्रम में अगली जो फरमाइश हमें मिली छत्तीसगढ़ डोगर गांव से, इसको भेजने वाले राष्ट्रपाल राधिका और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश आई है इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और हेमंत भाई, कुछ फरमाइश हमें और भी मिली है, वो हम हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे, तो आप कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहिए। और अभी सुन लेते हैं आप सभी की पसंद पर योगेश कुमार और साथियों से ये रागनी।

हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी योगेश कुमार और साथियों से, और योगेश कुमार की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी है। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: हेमंत भाई, देखिए सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें कृषि पर घरेलू खर्च के लिए सहायता प्रदान करना। इसके तहत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता के लिए हर वर्ष 6,000 रूपए दिए जाते हैं, जो यह राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों के रूप में दिया जाता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 जून 2026 को किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई।

0: इस अवसर पर जानकारी देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलकर हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। साथियों, देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
2: तो सुनील भाई, अभी हमारे किसान भाइयों को हमने सुनवाया किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संदेश है देश के प्रति, किसानों के प्रति, वो हमने सुनवाया। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई हमें खेत बचाओ जो अभियान है, जिसके बारे में हम पूर्व कार्यक्रमों में भी बहुत बातें करते हैं, उससे जुड़ना है और बाकी किसानों को भी प्रेरित करना है कि वो भी क्योंकि जो उर्वरक होता है उसमें जो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के लिए उन्होंने मना किया है कि भाई वैसा उर्वरक जो अपनी खेतों में नहीं डालना, क्योंकि उससे नुकसान, फायदा तो होता है लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है।
0: और भाई देखिए, इस समय खरीफ फसलों की जो बुआई की तैयारी भी चल रही है,
2: हाँ,
0: तो कुछ क्षेत्रों में जो प्री मानसून बारिश भी हुई है, लेकिन देखिए मानसून की अभी इंतजार है और उत्तर भारत और मध्य भारत में मानसून के जो आने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो देखिए, मिट्टी में पर्याप्त नमी कम से कम 4 से 6 इंच होने पर ही बुआई करें। और दूसरा भाई, बीज उपचार अवश्य करें, जहां से भी आप बीज लें उपचारित बीज लें, अगर बीज उपचारित ना हो तो भाई बीज को उपचारित अवश्य करें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई देखिए, अचानक कई बार बारिश तेज हो जाती है, तो ऐसे में खेत में भाई जो आपकी फसल के हिसाब से जल निकासी का भी प्रबंध करना बहुत जरूरी है। और सिंचाई और नमी प्रबंधन जिन क्षेत्रों में बारिश में गैप हो या तापमान अधिक हो, वहां उपलब्ध पानी से हल्की सिंचाई करें या नमी बनाए रखने के लिए जैविक मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल का चुनाव भी भाई देखिए, अपने क्षेत्र की कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार कम अवधि वाले उन्नत किस्मों का चयन करें तो अच्छे रहेगा।
2: बिल्कुल। और मानसून के दिनों में खेतों में फसलों के साथ साथ खरपतवार जो होते हैं, फालतू घास भी बहुत तेजी से उगने लगती है, और ये घास जो है मुख्य फसल के हिस्से को खाद, पानी और धूप सोख लेती है, जिससे फसल कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद खेत की अच्छे से निराई गुड़ाई करके कचरा जो है उसका निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा हवा में नमी और गर्मी के कारण इस मौसम में फसलों पर कीड़ों और बीमारियों का हमला भी बहुत जल्दी होता है। किसानों को नियमित रूप से अपनी खेतों को मुआयना जो है करते रहना चाहिए। अगर पत्तियों में कीड़े या कोई बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर नीम के तेल या किसी सही कीटनाशक दवा का छिड़काव जो है करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, इस तरह से भाई देखिए, छोटे छोटे बातों का आप ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे भरपूर उत्पादन। और हेमंत भाई, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि कुछ और फरमाइश हमें भाइयों की मिली है
2: जी,
0: तो अगले जो कलाकार है वो है भूलन त्यागी, और भूलन त्यागी से उपदेश सुनने के लिए फरमाइश हमें मिली है। ये पहली फरमाइश मिली है सुनैना पवन भोंडे और तनुजा की थिलोरा दयापुर से।
2: बिल्कुल, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, और ये फरमाइश हमारे पास आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है गांव लोहड़ा जिला बागपत से जगमोहन प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
2: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
2: एक और फरमाइश हम तक आई है करावल नगर दिल्ली से श्री रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये अगली फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
2: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है बिहार डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, बेगम शबनम और उनके समस्त परिवार की तरफ।
2: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है ग्राम पाजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चांसलिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पहले से उत्तर प्रदेश से, उसको भेजने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा।
2: गांव शेरड़ा जिला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है मिंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। डुमराव बिहार से फरमाइश मिली है डॉक्टर डब्लू अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
2: और अगली फरमाइश हमारे पास आई है ढाणा नरसाना भिवानी से, ये फरमाइश आई है जगदीश चांडालिया, राजवीर चांडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और उनका समस्त परिवार।
2: अगली फरमाइश हमारे पास आई है चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से, ये फरमाइश आई है तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा, शिवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की।
2: मुंगी बैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर और परमेश्वर की फरमाइश हम तक आई है।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सुक्रांति चौहान और उत्कृष्ट चौहान।
2: चौधरी वास हिसार से फरमाइश आई है हमारे पास प्रियांशी और केशव की, और सुनना चाहते हैं बुलियन त्यागी को।
0: और साथ ही भैया लिखते हैं कि आपने जो रागनी सुनवाई ये उसकी तारीफ करते हैं कि वो अच्छी रागनी थी। बिल्कुल। और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है ये मिली है रावता खेड़ जिला हिसार हरियाणा से सियाराम भादू सुशीला और रोबिन की तरफ से।

0: अगली फरमाइश रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हिमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश आई है
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव हांडीखेड़ा जिला सरसा से राधे श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा की।
0: संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव की भी फरमाइश हम तक आई है
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश उर्मिला दीपक और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश गांव नालोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा राजबाला कार्तिक और वेदांश की फरमाइश हम तक आई है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कम्बोज पिंकी वंश और भुवेश कुमार कम्बोज की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश हम तक आई है
1: और ये फरमाइश हमें मिली है दतरंगी के भागवत वर्मा शांति लीलावती विनीता और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अब सुनते हैं इन सब फरमाइश करताओं की
1: भूलन त्यागी से ये उपदेश।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना बुलंद त्यागी से। और देखिए भाई, बदलाव प्रकृति का नियम है।
1: बिल्कुल,
0: सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये मौसम बदलते रहते हैं। और भाई देखिए, तपती गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो हम सब के मन को खूब भाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बरसात के मौसम में भाई यदि सावधानी न बरती जाए तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको भी बता देंगे, भाई बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग व बीमारियां हो जाती हैं। तो इस मौसम में आपने जो पशुओं का विशेष ध्यान रखना, उनके खान पान का विशेषकर बात करें तो देखिए

0: बिछावन को गीला ना होने दे,
1: बिल्कुल
0: हमेशा साफ सुथरा बिछावन
1: बारिश
0: रखे।
1: के मौसम में होता यह है कि पानी भर जाता है, और पानी से क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, और कीचड़ से लगातार उसमें पानी जमा रहता है, तो कहीं ना कहीं उनके पैरों में जो खुर होते हैं उनमें भी बीमारियां लग जाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: खुरपका मुंह पका की बात करें तो वो बीमारी इस तरह से हो सकती है। और देखिए भाई, दूसरी बात ये कि पशुओं का जो खान पान का आपने विशेष ध्यान रखना है। यदि पशु का कोई भी आहार आप बदलते हैं तो उसे धीरे धीरे बदलें, ये नहीं कि भी एकदम से आपने पशु का आहार बदल दिया, चाहे वो हरे चारे की बात हो, सूखे चारे की बात हो। इसी तरह से देखिए भाई, जो पशुओं को आपने जो जल पिलाना, वो स्वच्छ जल पिलाना। कई बार भाई सोचते हैं कि भाई चलो तालाब में, पोखर में, जोड़ में पशु को नहलाने जा रहे हैं, पशु वहीं पानी पी लेगा, तो भाई ऐसा ना करें, क्योंकि वो जो तालाब का और पोखर का जो पानी साफ नहीं होता, उससे भाई पशुओं में कई तरह के रोग व बीमारियां होने के चांस रहते हैं।
1: और खान जो पशुओं के लिए जो हम चारा डालते हैं, वो जगह के जो कोन कोने वगैरह होते हैं, जो सीमेंट से बनी हुई वो होते हैं, उनके हौदी टाइप बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, पानी जमा रहता है, कोने में चारा जमा हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसका भी समय समय पर देखभाल करते रहेंगे और उसको साफ करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पशुओं के लिए भी वो लाभकारी सिद्ध होता है।
0: और भाई देखिए, एक बात और यहाँ जो हम अपने कार्यक्रम में हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि भाई देखिए, जो बचाव आपने जरूर करना है, और बचाव के लिए भाई देखिए, समय समय पर आप पशुओं को रोग रोधी टीके अवश्य लगवाएं। और ये टीके देखिए भाई, सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलते हैं, और नहीं तो भाई गाँव में भी आप बहुत कम कीमत पर ये टीके पशुओं को लगवा सकते
1: कहने का
0: हैं।
1: मतलब यह है कि जागरूक पूरी तरह से रहना है आपको अपने पशुओं के लिए, अपनी कृषि के लिए और स्वयं के लिए भी, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बातें की थी।
0: बिल्कुल। और अब भाई हेमंत भाई, बारी है कल के कार्यक्रमों के बारे में, कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जो जानकारी देंगे वो देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम से बचाव, और साथ ही जानकारी देंगे भाई जैव उर्वरकों का प्रयोग और मिट्टी की उर्वरता के बारे में।
1: वही 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में बातचीत रहेगी, कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाना।
0: और हमेशा की तरह भाई देखिए, 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का भी आप आनंद ले सकते
1: और
0: हैं।
1: साथ में बात करते हैं कल के मौसम की। अगले 24 घंटों में दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में मौसम के बदले हुए तेवर देखने को मिल सकते हैं। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिल सकती है।
0: तो देखिए भाई, मौसम का भी आपने ध्यान रखना है, पशुओं का भी और अपनी फसलों का भी और अपना भी। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिवनंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम,
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। शाम के 7:30 हुए हैं और अब समय है गजल का। लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न, 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की, और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से।

0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
1: नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। आयुष मंत्रालय ने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। इसके अलावा कर्तव्य पथ लोधी गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, सिरी फोर्ट खेल परिसर, यमुना खेल परिसर और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज सहित कई प्रमुख स्थानों पर भी योग सत्र आयोजित हुए। मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण के बाद प्रतिभागियों ने 45 मिनट के सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। आयोजन ने स्वास्थ्य जीवन शैली और योग के प्रति लोगों की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया। योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि लगभग 190 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तब से सभी देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि योग से मानसिक जागरूकता बढ़ती है।
2: योग मैं भी दिन प्रतिदिन करता हूं, इससे बहुत शारीरिक एजिलिटी आती है, मानसिक जागृति आती है और शांत मन से, शांत चित्त से लंबे समय तक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस योग दिवस पर हम संकल्प लें कि हम कम से कम अपने दैनिक जीवन में योग का उपयोग करते हुए अपने जीवन को और उत्तम बना सकें, अपने शरीर को और अच्छा बना सकें, अपने मन को शांत रख सकें।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पूरी दुनिया कहा कि आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से एकजुट हो रही है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ता है।
4: आज पूरा विश्व योग के माध्यम से जुड़ रहा है, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी योग से बढ़ता है। जब मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है तो सामाजिक और राष्ट्र का स्वास्थ्य भी बढ़ता है और प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है तो पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए 100 दिन योगा का भी आह्वान किया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने योग किया है।
0: इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आसोला भाटी स्थित नीली झील पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वस्थ, सक्रिय और तनाव मुक्त बनाने की दिशा में योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो तन, मन और जीवन में संतुलन प्रदान करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि

0: को 365 दिन का कार्यक्रम बनाने पर बल देते हुए कहा कि योग से हमारी जीवन शैली बदलने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होगा।
1: योगा का देखिए फिजिकल फिटनेस एक चीज है, खासतौर पे आज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम जिसके थ्रू ये अचीव हो सकता है। बैलेंस हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बैलेंस से मेंटल बैलेंस निकलता है, फिजिकल बैलेंस निकलता है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। श्री संधू ने कहा कि लोगों का जबरदस्त उत्साह और सामूहिक भावना दर्शाता है कि योग एक ऐसी शक्ति है जो उम्र, पृष्ठभूमि और भूगोल की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ती है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय सहित राजधानी के विभिन्न जिलों में योग सत्र आयोजित किए। पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ईशा फाउंडेशन ने देशभर में कई योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित आदि योगी परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि योग में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित प्रतिभा और क्षमता को जागृत करने की अपार शक्ति है।
2: What we call as yoga.
3: जिसे हम योग कहते हैं वह कोई फिलॉसफी नहीं है, वह कोई विचारधारा नहीं है, ना ही कोई बिलीफ सिस्टम है, ना ही कोई धर्म है और निश्चित रूप से ये आपके शरीर मोड़ने और घुमाने के बारे में भी नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। जैसे बाहरी खुशहाली के लिए एक विज्ञान और तकनीक है, वैसे ही आंतरिक खुशहाली के लिए भी एक पूरा विज्ञान और तकनीक है। यदि आप एक इंसान हैं तो ये तकनीकें आप पर लागू होती हैं। यदि आप केवल इसका उपयोग करना चाहते हैं या यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो एक पूरा विज्ञान यहाँ मौजूद है जो जीवन भर की खोज का विषय है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे तीन प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कोली समाज के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय कोली समाज को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि कोली समाज ने अपने परिश्रम, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परम्परा से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि समग्र और स्वस्थ जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर दादा ने कहा कि योग से तनाव भी कम होता है और वजन नियंत्रण तथा प्रजनन स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है।
4: बहुत बढ़ रहा है और इंडिया में तो अबाउट 3.6 to 22.6% पाया गया है। बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारी एविडेंस बेस्ड रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है तो योग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, इट्स अ प्रोफाउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसको अगर हम अपने दिनचर्या में अपनाएं तो इस पे बहुत ज्यादा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ अजीत कुमार सिंगला ने की, जिसमें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट सुरक्षा, कांवड़ियों की सुगम आवाजाही, यातायात डायवर्जन, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों और राष्ट्रीय समारोह स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों आयोजनों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी। दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस अधिनियम 1985 पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में 71 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से कई किस्तों में लगभग 80 लाख रुपए निवेश करवाए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपराध ठगी की रकम को छिपाने के लिए उनको अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते थे। मामले की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम के समय हल्के बादलों के साथ धीमी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल दोपहर हल्के बादल छाए रहने की संभावना बताई है और शाम में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न, 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यागाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। श्रोताओं, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया नहीं, बल्कि अंतर मन को साधने, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और समूची प्रकृति के साथ एकाकार होने का नाम है। यह भारतीय मनीषियों का संपूर्ण विश्व को वह अमूल्य उपहार है जो हमें संयम, संतुलन और वैश्विक शांति का मार्ग दिखाता है। जहाँ योग मनुष्य को भीतर से शांत और चैतन्य बनाता है, वहीं कविता हमारी आत्मा को रसमय और संवेदनशील करती है। सच कहा जाए तो योग और कविता दोनों ही चित्त की एकाग्रता और आंतरिक खोज की यात्रा है। इस अवसर पर लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री सुनील हापुड़िया, श्री मित्रपाल सिसोदिया और सुश्री व्यंजना पांडे। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री मित्रपाल सिसोदिया।
1: नमस्कार, मैं मित्र गाजियाबादी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कवि और योग शिक्षक आदरणीय सुनील हापुड़िया जी और वरिष्ठ कवियत्री जानी पहचानी हमारी व्यंजना पांडे जी नोएडा से। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आदरणीय व्यंजना पांडे जी को उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ कि हमें भेजा गया औरत बनाकर हमारी एक भी छुट्टी नहीं है। आदरणीय व्यंजना पांडे जी,
2: नमस्कार। मैं अपनी एक गजल पढ़ूंगी पहले।
3: स्वागत।
2: कि मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती है, मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती है, जिंदगी रस्सी पे चलती एक लड़की है।
3: वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। जिंदगी रस्सी पे चलती एक लड़की है कि आग पानी आसमां मिट्टी हवा लेकर, आग पानी

0: आसमां मिट्टी हवा लेकर बुत बनाए फिर खुदा ने जान भर दी है।
1: वाह।
0: हम यहाँ आए हैं क्यों मालूम तो कर ले कि हम यहाँ आए हैं क्यों मालूम तो कर लें, तय करेंगे बाद में क्या राह चुननी है। कि हम यहाँ आए हैं क्यों मालूम तो कर लें, तय करेंगे बाद में क्या राह चुननी है। पर खोल कर खिड़की बहुत घबरा रहा था दिल, खोल कर खिड़की बहुत घबरा रहा था दिल, एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है।
1: क्या बात है, एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है।
0: खोल कर खिड़की बहुत घबरा रहा था दिल, एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है। और अगला शेर कि इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इसलिए तो हाथ में अब सिर्फ मिट्टी है।
2: बहुत खूब, बहुत अच्छा।
1: वाह वाह वाह।
0: कि इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इसलिए तो हाथ में अब सिर्फ मिट्टी है। और आखिरी शेर कि मैं खुदी को भूलकर कैसे मिलूं उससे, मैं खुदी को भूलकर कैसे मिलूं उससे, जाल है मकड़ी का उलझी एक तितली है।
2: बहुत खूब, बहुत
1: क्या बात।
0: कि मैं खुदी को भूलकर कैसे मिलूं उससे, जाल है मकड़ी का उलझी एक तितली है।
1: क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म है।
1: स्वागत है,
2: स्वागत।
0: कि गुमसुम चांद की बिंदी वाली, गुमसुम चांद की बिंदी वाली, रात न जाने क्यों रूठी है। गुमसुम चांद की बिंदी वाली, रात न जाने क्यों रूठी है, आई है क्यों ओढ़ उदासी, हंसी कहाँ उसकी झूठी है।
1: आहा, क्या बात।
0: अब पूछे उससे कौन भला ये, मैं भी चुप वो मौन है ओढ़े। पूछे उससे कौन भला ये, मैं भी चुप वो मौन है ओढ़े। सन्नाटा भर शोर मचाए, चुप का पहरा कौन है तोड़े। कि सन्नाटा भर शोर मचाए, चुप का पहरा कौन है तोड़े, उठती गिरती सांसों नहीं, उठती गिरती सांसों नहीं, है थोड़ी उम्मीद बढ़ाई, और शोर मचाए हैं वो इतना कि दोनों को नींद ना आई।
2: बहुत सुंदर।
0: कि उठती गिरती सांसों नहीं, है थोड़ी उम्मीद बढ़ाई, शोर मचाए है वो इतना कि दोनों को नींद ना आई। शायद कोई एक उठे अब, कि शायद कोई एक उठे अब, या फिर दोनों हाथ बढ़ाए। शायद कोई एक उठे अब, या फिर दोनों हाथ बढ़ाए, ठोकर से बस एक जरा सी बीच खड़ी दीवार गिराए।
2: बहुत सुंदर।
0: ठोकर से बस एक जरा सी बीच खड़ी दीवार गिराए, रात भी चुप सी देख रही है, ये रात भी चुप सी देख रही है, फिर कब हम दोनों मुस्काए, और हम दोनों की होड़ हमी से एक दूजे से हार ना जाए। कि हम दोनों की होड़ हमी से एक दूजे से हार ना जाए। बहुत शुक्रिया,
2: बहुत सुंदर।
0: अब मैं आपके सामने एक गीत पढ़ूंगी।
1: स्वागत है।
0: मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं मां,

0: आते हैं और डर कर खोलूं आँख तो जीवन जाल बहुत उलझाते हैं। ओ मुझे छुपा ले आंचल में, सुख सपनों में खो जाऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। हो तू क्या जाने कब से हो गई नींद चढ़ी रातें मेरी। तेरी चौखट पर छूट गई बेफिक्री की बातें मेरी। हो बीती बात जमाने की, दिन चढ़े तलक सो जाऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं।
1: वाह वाह बहुत अच्छी।
0: खेल खिलौने कट्टी बट्टी बातें सारी हवा हुई। और तू भी मिलती कभी कभी, लगता कि जैसे दवा हुई। हो खेल खिलौने कट्टी बट्टी बातें सारी हवा हुई। तू भी मिलती कभी कभी, जो बीमारी की दवा हुई। कुछ दिन को मेरे पास तो आ, फिर से अच्छी हो जाऊं माँ।
1: वाह वाह।
0: मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। कब से मेरे कान न खींचे, कब

0: बातें कड़ी न की हो मुझको डांट न पाए माँ, तू इतनी भी तो बड़ी न की। ओ फिर तेरे आंगन की मैं मट्टी कच्ची हो जाऊं माँ।
1: क्या बात है,
0: मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ।
1: बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे।
0: हाथ कांपते हैं अब तेरे घुटने भी थर्राते हैं, और फिर भी मेरे उलझनों के हल पास तेरे मिल जाते हैं। अरे आज मुझे ये राज बता दे, क्या जिद पर आ जाऊं माँ। हो आज मुझे ये राज बता दे, क्या जिद पर आ जाऊं माँ। ओ मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। ओ मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। अरे एक ही बात का डर है मुझको माँ, तू छोड़ नहीं जाना। ओ मेरे अंदर की बच्ची से माँ मुँह मोड़ नहीं जाना। अब भी तेरी जरूरत मुझको सच्ची तुझे बताऊं माँ। हो अब भी तेरी जरूरत मुझको सच्ची तुझे बताऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ।
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर, वाह वाह वाह,
3: बहुत अच्छे।
1: तो जैसा कि आपने सुना, व्यंजना जी ने बहुत सुंदर गीत और गजल हमें सुनाई। इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुनील हापुड़िया जी को, जो एक वरिष्ठ कवि होने के साथ साथ योग के शिक्षक भी हैं और बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो उन्हीं की दो लाइनों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। कि नीड़ मढ़िया दफ्तर घरना कोठी ना बुतखाने में, नीड़ मढ़िया दफ्तर घरना कोठी ना बुतखाने में, गीत हमारे रहा करेंगे दिल के राज घराने में। तो आइए सुनते हैं आदरणीय सुनील हापुड़िया जी को।
3: धन्यवाद भाई मित्र जी। आज चूंकि हमारा कार्यक्रम योग दिवस के उपलक्ष में है और 90 वर्ष हो रहे हैं आकाशवाणी को भी आभार व्यक्त करते हुए थोड़ा योग पे एक कुछ दोहे में बोलना चाहूंगा।
1: स्वागत।
3: प्राणों को आयाम दें, प्राण का मतलब श्वास से होता है, कि प्राणों को आयाम दें तन मन को श्रम योग, प्राणों को आयाम दें तन मन को श्रम योग, ऋषि मुनि सब कह गए योग भगाए रोग। ऋषि मुनि सब कह गए योग भगाए रोग। और कुछ थोड़ा सा अध्यात्म भी योग से ही है सब कुछ, कि ये दुखिया संसार तो सौ मूलन को मूल, ये दुखिया संसार तो सौ मूलन को मूल, लिप्त भये तो जानिए सबसे भारी भूल।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: कि वृक्ष फलों के रोपिए, सबके लिए है, कि वृक्ष फलों के रोपिए प्रश्न करो सब मौन, वृक्ष फलों के रोपिए प्रश्न करो सब मौन, आप कभी ना सोचिए फल खाएगा कौन।
2: बहुत सुंदर,
3: आप कभी ना सोचिए फल खाएगा कौन। ये अपना ब्रह्मांड तो, ये सारा ब्रह्मांड तो है रत्नाकर संत, ये सारा ब्रह्मांड तो है रत्नाकर संत, कर्म हमारे देख कर लौटा दे अनंत। जैसा करते हैं वैसा ही तो भरेंगे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: कर्म हमारे देख कर लौटा दे अनंत। और सब कुछ प्रभु का है यहाँ, सब कुछ प्रभु का है यहाँ, आन बान अरुशान, सब कुछ प्रभु का है यहाँ, आन बान अरुशान, माटी होनी देह तो कापे करें गुमान।
1: बहुत सुंदर।
3: माटी होनी देह तो कापे करें गुमान। और जीवन का दर्शन यही, गीता में कृष्ण कहते हैं कि जीवन का दर्शन यही, यही काम निष्काम, जीवन का दर्शन यही, यही काम निष्काम, नयन मूंद दर्शन करें निज नयनन अभिराम।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: नयन मूंद दर्शन करें निज नयनन अभिराम। और धर्म अर्थ अरुकाम की, धर्म अर्थ अरुकाम की कब सीमा है कोई, धर्म अर्थ अरुकाम की कब सीमा है कोई, जो जितना भी डूबता उतना जाता खोए।
1: बहुत सुंदर, बहुत।
3: जो जितना भी डूबता उतना जाता खोए। और साधना कैसे आगे बढ़ेगी, कि सफल रहेगी साधना, सफल रहेगी साधना साधो अंतर मौन, सफल रहेगी साधना साधो अंतर मौन, आत्म तत्व सद जाए जब

0: बाकी सब है गौन।
1: बहुत सुंदर,
0: बाकी सब है गौन। और एक दो दोहा आप देखें, ये जीवन तो हमारा क्षण भंगुर है, जो करें परमात्मा के लिए अच्छा है। कि क्षण भंगुर जीवन मिला, क्षण भंगुर जीवन मिला, उलट पुलट प्रतिमान। क्षण भंगुर जीवन मिला, उलट पुलट प्रतिमान, काया कच्ची माटड़ी कापे करें गुमान।
1: बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, क्या कहें।
0: क्षण भंगुर जीवन मिला, उलट पुलट प्रतिमान, काया कच्ची माटड़ी कापे करें गुमान। और किन जन्मों का कर्म फल, किन जन्मों का कर्म फल भोग रहे हम आज, किन जन्मों का कर्म फल भोग रहे हम आज, अब ऐसा कुछ कर चले सुकले सकल समाज।
1: बहुत सुंदर।
0: किन जन्मों का कर्म फल भोग रहे हम आज, अब ऐसा कुछ कर चले सुखले सकल समाज।
1: बहुत सुंदर।
0: और नेह मिले जाना भला, नेह मिले जाना भला, मिले जहां जिस ओर, नेह मिले जाना भला, मिले जहां जिस ओर, वरना पछतावा रहे हर संजा अरुभोर, वरना पछतावा रहे हर संजा अरुभोर।
1: बहुत सुंदर।
0: और एक दो दोहा देखें कि चलो, हम लोगों को चलते रहना चाहिए, चरैवेति चरैवेति, कि चलो परिंदो उड़ चलें, चलो परिंदो उड़ चलें, लंबी भरें उड़ान, चलो परिंदो उड़ चलें, लंबी भरें उड़ान, एक दुनिया के पार भी होगा एक मकान।
1: बहुत सुंदर, वाह।
0: चलो परिंदो उड़ चलें, लंबी भरें उड़ान, इस दुनिया के पार भी होगा एक मकान। और जीवन तो घटता जाता है कि पल पल पल पल घट रही, पल पल पल पल घट रही अपनी हर एक सांस, पल पल पल पल घट रही अपनी हर एक सांस, कैसे अब निकले सकी भीतर गहरी फांस।
1: बहुत सुंदर।
0: कैसे अब निकले सकी भीतर गहरी फांस। के अंतर मन की साधना, अंतर मन की साधना साधे बिरला कोय, अंतर मन की साधना साधे बिरला कोय, जो ये साधन साध ले पार सकल भव होए।
1: बहुत अच्छे,
0: पार
1: बहुत अच्छे,
0: सकल भव होए। और एक दो दोहे और देखें कि ढलते ढलते ढल गई,
1: ढलते ढलते ढल गई,
0: ढलते ढलते ढल गई उम्र सुनहरी धूप, ढलते ढलते ढल गई उम्र सुनहरी धूप, लौट कभी ना पाए है पहले जैसा रूप।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: ढलते ढलते ढल गई उम्र सुनहरी धूप, लौट कभी ना पाए है पहले जैसा रूप। और एक दोहा देखें कि मरना होवे मौत से,
1: मरना होवे मौत से,
0: मरना होवे मौत से या फिर मारे प्रेम, मरना होवे मौत से या फिर मारे प्रेम, मरना होवे मौत से या फिर मारे प्रेम, झूठे बंधन मोह के भूल गए व्रतनेम।
1: बहुत सुंदर,
0: झूठे बंधन मोह के भूल गए व्रतनेम। और सुख दुख पे देखें कि सुख दुख दोनों एक से, ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं, कि सुख दुख दोनों एक से कहीं न अंतर खास, सुख दुख दोनों एक से कहीं न अंतर खास, जिसमें ज्यादा लिप्त हो करता वही उदास।
1: बहुत सुंदर।
0: सुख दुख दोनों एक से कहीं न अंतर खास, और जिसमें ज्यादा लिप्त हो करता वही उदास। और दर्शन पे देखे बोल रखो मन भाव ने, हमको कैसा बोलना है समाज में, कि बोल रखो मन भाव ने सबको सुखी बनाए, बोल रखो मन भाव ने सबको सुखी बनाए, कटु शब्दों की मार से तन मन सब रो जाए।
1: बहुत सुंदर।
0: कटु शब्दों की मार से तन मन सब रो जाए। और एक और दोहा देखें कि करता दर्शन देह का, करता दर्शन देह का रूप नहीं दिख पाए, करता दर्शन देह का रूप नहीं दिख पाए, देखन चाहे रूप तो अंतर मन में जाए।
1: बहुत सुंदर।
0: देखन चाहे रूप तो अंतर मन में जाए।
1: बहुत सुंदर।
0: आजकल की अवस्थाओं पर एक समसमा

0: एक रचना सीखूं कि इस दुनिया में अब तो मेरा दमसा घुटता है,
1: बहुत सुंदर।
0: इस दुनिया में अब तो मेरा दमसा घुटता है, आशाओं का एक बबूला जिंदा रखता है,
1: बहुत सुंदर।
0: इस दुनिया में अब तो मेरा दमसा घुटता है, आशाओं का एक बबूला जिंदा रखता है, अंकुर कोई उगना चाहे मन के मरुथल में,
1: बहुत सुंदर।
0: अंकुर कोई उगना चाहे मन के मरुथल में, दूषित होती जलवायु से डरसा लगता है,
1: बहुत सुंदर।
0: दूषित होती जलवायु से डरसा लगता है, और प्यार भरी शीतल धरती पर ठहरा करते हम, प्यार भरी शीतल धरती पर ठहरा करते हम, मन मेरा जो एक परिंदा उड़ता रहता है,
1: बहुत सुंदर।
0: मन मेरा जो एक परिंदा उड़ता रहता है, और नील गगन में उड़ता कैसे ये आवारा दिल,
1: बहुत सुंदर।
0: नील गगन में उड़ता कैसे ये आवारा दिल, नील गगन में उड़ता कैसे ये आवारा दिल, शोक चटक चंचल कलियों पर मचला करता है,
1: बहुत सुंदर।
0: नील गगन में उड़ता कैसे ये मेरा आवारा दिल, शोक चटक चंचल कलियों पर, शोक चटक चंचल कलियों पर मचला करता है। और एक प्यारा शेर है कि गैरों की मानिद ना हंसना मेरे गिरने पर, गैरों की मानिद ना हंसना मेरे गिरने पर, हर नन्ना छोटा सा बच्चा गिरता उठता है,
1: बहुत सुंदर।
0: हर नन्ना छोटा सा बच्चा गिरता उठता है, और तुम पूछो तो बतलाऊंगा राम कहानी सब,
1: बहुत सुंदर।
0: तुम पूछो तो बतलाऊंगा राम कहानी सब, भीतर मेरे जो बैठा है रोका करता है, तुम पूछो तो बतलाऊंगा राम कहानी सब, भीतर मेरे जो बैठा है रोका करता है। और कितने सारे प्रकृति के कवि की बात कि कितने सारे रंग भरे हैं उसकी रचना में, कितने सारे रंग भरे हैं उसकी रचना में, मेरा कवि जो टुकुर टुकुर बस देखा करता है,
1: बहुत सुंदर।
0: कितने सारे परमात्मा की रचना में कितने सारे रंग हैं कि कितने सारे रंग भरे हैं उसकी रचना में, मेरा कवि जो टुकुर टुकुर बस देखा करता है,
1: बहुत सुंदर।
0: और चैन कहाँ लेती ये मुंबई दौड़ा करती है, कि चैन कहाँ लेती ये मुंबई दौड़ा करती है, कौन सुनेगा तेरी बातें किससे कहता है,
1: बहुत सुंदर।
0: कौन सुनेगा तेरी बातें किससे कहता है, नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन,
1: बहुत सुंदर।
0: कि नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन वन, नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन वन, मेरे मन का उड़न खटोला घूमा करता है,
1: बहुत सुंदर।
0: नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन वन, मेरे मन का उड़न खटोला घूमा करता है, अपना सब कुछ लुट जाने पर शेष बहुत बचता है,
1: बहुत सुंदर।
0: अपना सब कुछ लुट जाने पर शेष बहुत बचता है, मेरे अंदर एक समंदर उमड़ा करता है, अपना सब कुछ लुट जाने पर शेष बहुत बचता है, मेरे अंदर एक समंदर उमड़ा करता है। और सारी दुनिया सो जाती जब अपनी मस्ती में, सारी दुनिया सो जाती जब अपनी मस्ती में, मेरे भीतर छोटा बच्चा कुछ कुछ करता है,
2: क्या बात है।
0: सारी दुनिया सो जाती जब अपनी मस्ती में, मेरे भीतर छोटा बच्चा कुछ कुछ करता है। और बूंद बूंद से बादल और समंदर बनते हैं, बूंद बूंद से बादल और समंदर बनते हैं, और बड़ा बादल आंखों से बरसा करता है,
1: बहुत सुंदर।
0: कि माँ के आंचल में ही मेरी दुनिया बसती सी, कितना किसको समय मिला बस किसका चलता है,
1: बहुत सुंदर।
0: माँ के आंचल में ही मेरी दुनिया बसती थी, कितना किसको समय मिला बस किसका चलता है। मेरा मन है कि कुछ गजल के शेर
1: जी, तो स्वागत।
0: थोड़ी हमने गजल कही है थोड़े शेर कहे, थोड़ी हमने गजल कही है थोड़े शेर कहे, इस बेगानी बस्ती में हम बनकर बोझ रहे,
1: बहुत सुंदर।
0: थोड़ा सा बस प्यार मिला है, नफरत खूब मिली, अपनों की ही दी पीड़ा को हम दिन रात सहे,
1: बहुत सुंदर।
0: कैसे हमने दिन काटे हैं, कैसे रात कटी, इन गजलों में हमने अपने ही जज्बात कहे,
1: बहुत सुंदर।
0: और जो भी आया झील समझकर कंकर फेंक गया, सहज नदी का पानी बनकर हम हर बार बहे, और जब जब तुमने पत्थर मारे हम फल फूल दिए,
1: बहुत सुंदर।
0: सड़क किनारे पेड़ों जैसे हम भी ढीठ रहे, सड़क किनारे पेड़ों जैसे हम भी ढीठ रहे, क्या समझेंगे मोल कभी वे खारे पानी का

0: जितने रोके हमने आंसू उतने और बहे।
1: बहुत सुंदर।
0: सब हमको पागल ही कहते और दीवाना भी, कुछ तो सूरत ऐसी कुछ ऐसे हालात रहे। और अंतिम है कि पागल ना बतलाना हमको, भोले भाले हैं अपना सब कुछ दान दिया फिर खाली हाथ रहे।
1: बहुत सुंदर। और अब मैं आह्वान करूंगा अब तक संचालन करे भाई मित्र गाजियाबादी जी का, वो आए और अपनी गजलों से हमें कुछ आनंद प्रदान करें। भाई
2: बहुत बहुत आभार। एक मतला एक शेर देखें आप सबकी खिदमत में पेश है कि जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूं मैं, जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूं मैं, आंधियां उड़ा दे मुझे हवा नहीं हूं मैं।
1: क्या बात।
2: जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूं मैं, आंधियां उड़ा दे मुझे हवा नहीं हूं मैं, और मंजिलें कदम चूम लेंगी एक दिन मेरे, कौन कह रहा है कि बचा नहीं हूं मैं।
3: वाह।
2: और देखें एक शेर एक मतला
1: इरशाद
2: कि जब भी रिश्तों से निभा करता हूं, जब भी रिश्तों से निभा करता हूँ जिंदगी अपनी तबाह करता हूँ।
1: क्या बात है।
2: जब भी रिश्तों से निभा करता हूँ जिंदगी अपनी तबाह करता हूँ, बस समझता हूँ सभी को अपना सा, मैं फकत इतना गुनाह करता हूँ।
1: बढ़िया बढ़िया।
2: बस समझता हूँ सभी को अपना सा, मैं फकत इतना गुनाह करता हूँ। और चार लाइन देखें कि उसके मिलने भर की केवल हम खुशी से मर गए, उसके मिलने भर की केवल हम खुशी से मर गए, गम जरा सा क्या दिखाया हम उसी से मर गए। उसके मिलने भर की केवल हम खुशी से मर गए, गम जरा सा क्या दिखाया हम उसी से मर गए, और मौत से मरते हैं दानिश लोग इस दुनिया में बस, मौत से मरते हैं दानिश लोग इस दुनिया में बस, हम ही पागल थे फकत जो जिंदगी से मर गए।
1: क्या बात है क्या बात है।
2: और एक गजल देखें
1: स्वागत
2: मतलब ऐसे खिदमत है देखिएगा, जब मिला गम प्यार से हमने उठाकर रख दिया, जब मिला गम प्यार से हमने उठाकर रख दिया, दर्द को दिल से लगाया मुस्कुराकर रख दिया।
1: क्या बात है।
2: कि जब मिला गम प्यार से हमने उठाकर रख दिया, दर्द को दिल से लगाया मुस्कुराकर रख दिया। और शेर देखें कि जब कभी भरने लगा था जख्म तेरी याद का, जब कभी भरने लगा था जख्म तेरी याद का, जख्म पर थोड़ा नमक हमने लगा कर रख दिया।
1: क्या बात है क्या बात है।
2: और एक और शेर देखें कि बिजलियों के खौफ से जिंदा रहें कैसे भला, बिजलियों के खौफ से जिंदा रहें कैसे भला, हमने अपना आसियां खुद ही जला कर रख दिया। और एक शेर यूं भी कि जब कभी भी सर उठाया नफरतों ने देखिए, जब कभी भी सर उठाया नफरतों ने देखिए, नफरतों में प्यार को हमने मिलाकर रख दिया। और एक शेर की हो भी सकती है दोबारा आपको उल्फत लगा, ये भ्रम भी आपने मेरा मिटाकर रख दिया, और रोशनी आंखों से चमकी आपकी पुरनूर थी, रोशनी आंखों से चमकी आपकी पुरनूर थी, आपने दिल का अंधेरा ही मिटाकर रख दिया। और एक छोटी बहर की गजल देखिएगा चार पांच शेर बस
1: स्वागत है
2: कि सिर्फ दिखावा कर जाएंगे, मतलब देखिएगा कि सिर्फ दिखावा कर जाएंगे लोग इसी में मर जाएंगे, सिर्फ दिखावा कर जाएंगे लोग इसी में मर जाएंगे, जुर्म अमीरों के होंगे पर, जुर्म अमीरों के होंगे पर इसके उसके सर जाएंगे, जुर्म अमीरों के होंगे पर इसके उसके सर जाएंगे, और पीछा छोड़े याद तुम्हारी, पीछा छोड़े याद तुम्हारी हम अपने अब घर जाएंगे।
1: क्या बात है।
2: पीछा छोड़े याद तुम्हारी हम अपने अब घर जाएंगे, बात नहीं कर सच्चाई की, बात नहीं कर सच्चाई की लोग सुनेंगे डर जाएंगे।
1: वाह वाह वाह बढ़िया।
2: बात नहीं कर सच्चाई की लोग सुनेंगे डर जाएंगे, सागर का अगर गम देखोगे, सागर का अगर गम देखोगे आंख में आंसू भर जाएंगे। एक मतला और चंद शेर देखिएगा आपकी खिदमत में पेश है
3: स्वागत
2: कि इश्क क्या था, इश्क क्या था हादसा था हो गया तो हो गया, इश्क क्या था हादसा था हो गया तो हो गया, उसको होना बेवफा था हो गया तो हो गया।
1: क्या बात है।
2: कि इश्क क्या था हादसा था हो गया तो हो गया, उसको होना बेवफा था हो गया तो हो गया। और एक शेर देखें कि हम वफा रखकर अभी तक रो रहे हैं बेसबब, हम वफा रखकर अभी तक रो रहे हैं बेसबब, बेवफा से राबता था हो गया तो हो गया।

0: वाह, शेर की जी लिए कितने ही लम्हे हमने उसके इश्क में, जी लिए कितने ही लम्हे हमने उसके इश्क में, हिजर केवल बदमजा था, हो गया तो हो गया। और एक शेर की मरहला ही हम रहे मंजिल ना उसकी हो सके, मरहला ही हम रहे मंजिल ना उसकी हो सके, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, हो गया तो हो गया। और रूह दे दी हमने इंसान ही समझ कर क्यों उसे, रूह दे दी हमने इंसान ही समझ कर क्यों उसे, क्या पता था वो खुदा था, हो गया तो हो गया। और नाम पर उल्फत के उसने कर दिए वादे, मगर जिस्म से बस वास्ता था, हो गया तो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
0: इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री सुनील हापुड़िया, श्री मित्रपाल सिसोदिया और सुश्री व्यंजना पांडे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री मित्रपाल सिसोदिया। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का और 9:30 पर बिल्कुल सुनना ना भूलें हमारा कार्यक्रम नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे आज मुक्ति धन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी

0: लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी

0: पूर्व निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे।

मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for their exceptional performance throughout the tournament. Hockey India has announced a cash award of 3 lakh rupees for each player and 1.5 lakh rupees for each member of the support staff. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed, over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and Sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lift FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क के इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख का फैसला कुन उनसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज आईएनएस संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज आईएनएस अग्र शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन

0: मानसून की तैयारी में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। एनटीए ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहानात के तमाम मराकिज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: सीबीएसई ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताजा मालूमात के लिए सिर्फ सीबीएसई के सरकारी जराये और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासिरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अक्वामी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनाकिद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शुरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
0: इस साल के योग के बैन अल-अक़वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहिदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहिदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी माहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा 4 फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। 4 फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने FIH खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनेलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दामबोला में तीन मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन

से शिकस्त दी। भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारतीय ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने दो दो विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का एक तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनघास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक़िद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद अबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: किरण आबादी असल में सावन भादो।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराए है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराए है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय

0: नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री CJ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

न्यूज 24x7 चैनल है। 1:10 हुए हैं, ये वक्त है गीत सुनहरे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

पवित्र पापी फिल्म से आपने ये गीत सुना किशोर कुमार की आवाज में। आइए फिर सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म अमानुष में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दुश्मन

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में, दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है, फिल्म आखिर क्यों। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इजाजत से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म सिलसिला ये कहां आ गए हम, जावेद अख्तर के बोल, म्यूजिक शिव हरि का, गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर।

अमित कुमार की आवाज़ लव स्टोरी फिल्म से अभी आपने गीत सुना तेरी याद आ रही है। अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और अमित कुमार साधना सरगम की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाजत अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, भूले नहीं अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए आकाश।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित

0: युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.

तो आज सबसे पहले बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल हम लेकर आ रहे हैं आपके पास, और बहुत ही प्यारी लाजवाब गजल के साथ आज आप सुनेंगे। आज मैं हूं आपके साथ इस शानदार बेहतरीन प्रोग्राम में, जी हां कार्यक्रम में, बहुत ही सुंदर लाजवाब बेहतरीन खूबसूरत गजल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो आज सुनवाते हैं बहुत ही शानदार बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गजल। जी हाँ दोस्तों, ये गजल वाकई बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि गजलों का जो कार्यक्रम होता है वाकई बहुत ही सुकून भरा लाजवाब अनमोल खूबसूरत रचना होती है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी लगता है कि हाँ आखिरकार गजल जो होती है आखिरकार उनके अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है और जिसकी वजह से इंसान अपने आप को सुकून महसूस करता है ना। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीत से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल कार्यक्रम। जी हाँ, सुनवा रहे हैं लाजवाब बेहतरीन गजल। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन लाजवाब गजल आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, खूबसूरत अंदाज में लाजवाब रचना।

जी हाँ दोस्तों, और अभी जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप सुनेंगे बिना रुकावट के बहुत ही शानदार खूबसूरत कार्यक्रम के जरिए शानदार बेहतरीन रचना। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है गीत बहार। जी हाँ दोस्तों, गीत बहार के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना से हम शुरुआत कर रहे हैं। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के आप सुनेंगे शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर बेहतरीन रचना।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों का जो समावेश बना था, वाकई बहुत ही सुंदर, लाजवाब, खूबसूरत रचना। जी हाँ, और इसी के साथ आज का सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान

0: इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वर्ग कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों ने सहयोग लिया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की है। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
0: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपये पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
2: The Prime Minister commissioned three indigenously designed and built

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 और 15 सेकंड। यह साथियों, ये कार्यक्रम होता है बहुत ही शानदार, बेहतरीन, सुकून देने वाला खास प्रोग्राम। जी हां, गीत गजल। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, लाजवाब गजल। जी हाँ दोस्तों, गजल की जो खासियत जो होती है वाकई दिल के बहुत करीब होती है। हर इंसान जो गीत प्रेमी होता है उसमें वाकई बहुत ही लाजवाब अपने आप को महसूस करता है कि हाँ, ये शायद मेरे लिए ही ये गजल गाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज इस खूबसूरत कार्यक्रम गीत गजल कार्यक्रम के जरिए आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट स्टार जे ललित कुमार। एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत गजल आ रही है, कोई उम्मीद बुर। जी हाँ, कोई उम्मीद बुर गालिब पार्ट टू। बहुत ही शानदार, बेहतरीन गजल आ रही है और यह गजल गीतकार हैं गालिब साहब और संगीत से सजाया है सोमेश कुमार ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की, जी हाँ, गीत गजल कार्यक्रम की बहुत ही शानदार, बेहतरीन रचना के साथ आज आगाज कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये लाजवाब रचना।
1: सुनो सुनाए एक कहानी

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत, प्रस्तुति बांसुरी स्वर सिक्किल माला चंद्रा शेखर का है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026, सुबह के 4:54

मिनट और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होती है सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार।

6:10 पर वंदना कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, जिसमें आज का विषय है तुलसी के राम। 6:45 पर रामचरितमानस से बालकांड भाग 94 का प्रसारण किया जाएगा। 6:55 का समय संस्कृत समाचारों का है।

सुबह 7 बजे हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 का समय संगीतिका कार्यक्रम का है।

0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग 7:30 पर आप सुन सकते हैं। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज में आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। इसके उपरांत 8:30 का समय उर्दू समाचारों का है। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसकी समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूरनागिरी संशोधक और अग्रे शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले सहयोगियों, वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति जे डी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर कालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें।

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。

印度特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。